यू नो वॉट, वो जो होता है ना विंटर वेयर कलेक्शन, हाँ जी, जो सिंगापुर आने के साथ साथ रखा रह जाता है, वो एक मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया. एंड उस मूवी में शाहरुख खान ने उस कलेक्शन को इस तरह से ऑप्ट किया कि हम सबको भी ना सर्दियां इंजॉय करने का मन कर गया. और वो मूवी थी मैं हूं ना. हाँ जी, शाहरुख खान ने हिल स्टेशन पे जाके जिस तरह से कॉलेज लाइफ के अराउंड एक्ट किया, बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स, सुष्मिता सेन उस मूवी की जान थी, तो इस मूवी ने हमको बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करके दिए हैं. पर आपको पता है एक कोई रोल, अब वो कौन सा रोल है वो नहीं पता, लेकिन वो रोल सैफ अली खान तक भी पहुंचा था. एंड हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फिल्म मेकिंग में शाहरुख खान का रोल बहुत बड़ा था. हाँ जी, उन्होंने मूवी में कहीं भी ऐसा अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उन्होंने भी इस मूवी में अच्छा खासा अमाउंट लगाया था. और शाहरुख खान ने सोचा था कि सैफ अली खान को भी इस मूवी में लिया जाए, लेकिन जो इस मूवी की डायरेक्टर थी फराह खान, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था और सैफ अली खान को नहीं लिया गया. मे बी वो उस रोल के लिए इतने एप्ट नहीं थे, या फिर शाहरुख खान का जो चार्म है, वो लाइम लाइट है, वो डिवाइड हो जाती, कुछ भी हो सकता था. दैट्स वाई ऐसा डिसीजन लिया गया. मैं आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है. डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bhaiyo aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: You know what? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हमने देखे हैं जो कि फिल्मी लाइन में घुसने के साथ लाइमलाइट लेते हुए उसका पूरा फायदा उठाते हैं। हाँ जी, उनका कहना ये होता है कि जब आए हैं तो खर्चा करवा ही लेते हैं। थोड़ी सी वैनिटी वैन होनी चाहिए, थोड़े से डायमंड के हार होने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, लुक ऐसा होना चाहिए और मुझको पिक करने के लिए वो वाली कार आनी चाहिए या फिर वो वाली बस आनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, मैं आज रुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि जिस तरह से ये छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निकल कर आ गई हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के कच्चे चिट्ठे हम लोग के हाथ में आ चुके हैं, तो अब एक चीज रिवर्स हो गई है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स जो है ना वो ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं, ताकि डायरेक्टर्स जब पब्लिक के बीच में बैठे तो वो उन लोगों की तारीफ कर पाए कि सुनो सुनो सुनो सुनो, हम जिस एक्टर के संग काम कर रहे हैं ना वो तो शानदार इंसान है, एकदम सिंपल सोबर इंसान है, उसने कुछ भी डिमांड नहीं रखी। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाकर आजकल जो एक्टर्स है ना वो सिंपल गिरी पे स्विच होते जा रहे हैं। राइट, एनीवेज, मैं आज अनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आप भी अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए, सिर्फ लाइमलाइट के लिए नहीं, पर्सनली जीने के लिए भी।

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Singapore. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट। Oh yeah.

0: सुन टकाटक, ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: अच्छा, आप ना बड़े बड़े कामों के लिए बने हैं कि आप अपनी लाइफ में तरक्की करें, बड़े बड़े मेहनत वाले जो काम है वो ऑफिस में करके दिखाएं, बिजनेस में करके दिखाएं, कहीं बड़ी जगह आप निकल जाएं घूमने के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे काम ग्रोसरी खरीदने के आपके लिए नहीं बने हैं यार। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा कम्फर्ट जोन में रहिए और घर बैठे बैठे ग्रोसरी आप ऑर्डर कर सकते हैं GGMartOnline.com से, राइट। और अभी देखिए मैंगो सीजन है तो आपको फ्रेश मैंगोज मिल सकते हैं देवगढ़ के अल्फांसो, रत्नागिरी के अल्फांसो, 39 and 35 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स के अकॉर्डिंग। $70 ऑनवर्ड्स आपको फ्री डिलीवरी भी मिलने वाली है। तो ये जो इनके आम इम्पोर्टेड आते हैं ना, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। जनरली सुनने में आता है ना कि आम सड़ ना जाए, उसके ऊपर हार्मफुल केमिकल्स लगा दिए जाते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बाइड टाइप, जो कि टॉक्सिक बहुत होते हैं, आम को और ज्यादा हार्मफुल बना लेते हैं और ये हमारी हेल्थ पर सीधे असर करते हैं। इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको एकदम प्योर ऑर्गेनिक मैंगोज इंडिया से इम्पोर्टेड मिलने वाले हैं। तो डिटेल्स के लिए GGMartOnline.com विजिट कीजिए, ऑर्डर दीजिए एंड विद इन 5 to 7 days ये आपके घर की चौखट पर होंगे। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
1: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: मुझे ना बहुत सारी बातों पर विश्वास है, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं है कि सेलिब्रिटीज अपने स्किन के सीक्रेट्स हमारे संग ओपनली शेयर कर लेंगे। ना ना ना ना ना, वो इतने फ्लॉलेस कैसे हैं, क्यों हैं, किस वजह से रेगुलर दिखाई देते हैं, इतनी बड़ी बात वो बता देंगे? ना ना ना ना, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है बताना। सो हेलो हाई, मैं आरजे नुपुर मस्की मॉर्निंग शो पर आपके साथ। चलते फिरते बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने फेस ग्लो के बारे में बता देते हैं, तो आलिया भट्ट ने भी बता दिया है कि वो घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है। हाँ जी, घी उनकी डाइट का हिस्सा बन चुका है। वो चाहे पनीर की सब्जी हो या फिर छोले का सैलेड हो, वो चाहे वो मखाने होते हैं ना फ्राई करे हुए, राइट, वो हो, उन सारी चीजों में घी का कंजम्पशन काफी ज्यादा रहता है। तो देखिए, अब इन्होंने बोल तो दिया, अब आप इसे ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आई कांट कमिट कि ये सारी चीजें उतनी ही सच निकल कर आएंगी। तो चलिए, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे च...

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, आप भी इसे ऑप्ट करके सोशल मीडिया पे वीडियोस बना सकते हो। अरे अरे अरे, वीडियो का सजेशन मैं आरजे नुपुर नहीं देगी तो कौन देगी आपको? हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिंगापुर कितना खूबसूरत कंट्री है, राइट? एंड हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज का यहाँ पे शूट भी हुआ है, या फिर कुछ टेलीविजन शोज जैसे तारक मेहता और भी बहुत सारे शोज जो है वो यहाँ पे शूट किए गए हैं। क्या लोकेशन है, किस डायरेक्शन से शूट हुए, ये हमें पता है, तो क्यों ना हम उन इमेजेस का यूज करें जो कि मूवीज में और शोज में यूज करी गई हैं, और हम उस जगह उस शूटिंग लोकेशन पे खुद पहुंचे और इन दोनों का कंपैरिजन अपनी रील्स पर दिखाए। हाँ जी, इट्स इन ट्रेंडिंग नाउ, आजकल लोग सोशल मीडिया पे यही कर रहे हैं, रियल लोकेशन एंड रील लोकेशन यानी फिल्म की लोकेशन को कंपेयर करके। तो आप सिंगापुर का स्पेस इस तरह से यूटिलाइज करके सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। चलिए, सजेशन बहुत हो गए, मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ बढ़िया वाले गाने भी लगा रही है, आप उनसे एंजॉय कीजिए, डोंट गो एनीवेयर।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: नाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: अच्छा, आपके पास बहुत टाइम है, मतलब बहुत टाइम है ये सोचने का कि नहीं यार, इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होना चाहिए, इससे माहौल खराब हो रहा है, लड़ाई दंगा हम ये प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ख्याल करने के भी टाइम नहीं है हमारे पास। सो आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे पूछना चाहेगी कि धुरंधर मूवी, जो कि पहले और दूसरे पार्ट के साथ अक्रॉस द ग्लोब 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुकी है, मतलब दोनों का मिला के नहीं, मैं सिंगल सिंगल की बात कर रही हूँ, ओके? तो अब इसका OTT पर रिलीज होना तय है, क्या है, डील डन है यार। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो रिलीज होने से पहले कोर्ट में ये कहा गया था कि इस मूवी को रिलीज ना होने दें, इससे माहौल खराब हो रहा है। तो ये जो याचिका है, ये जो एप्लीकेशन है, इसको खारिज कर दिया गया है और इन चीजों को रिवर्स कर दिया गया है। आरजे इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
4: क्या जी?
5: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाह जी क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुन ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: कितना अच्छा होता है ना जब आप टीचर बनने जा रहे हैं और आपके घर पर ही प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं। हाँ जी, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि जरा बताइए इस इंडस्ट्री में क्या सही है और क्या नहीं। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि फिल्मी सितारों के बच्चों को ये मजा तो मिल ही जाता है। जैसे कि सारा अली खान, वो अपनी बुआ सोहा अली खान से भी पूछ सकती है, अपने जीजा जी से भी पूछ सकती है, अपने भाई डेफिनेटली उनके जो डायरेक्टर बनने की ओर है उनसे भी पूछ सकती है, अपने डैड सैफ से पूछ सकती है, अपनी स्टेप मॉम करीना से पूछ सकती है, अपनी रियल मॉम अमृता से सबसे बड़ी सलाह ले सकती है। तो रिसेंटली सारा अली खान बोला कि मुझे डेफिनेटली इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले ही बोल दिया गया था कि तुम्हें रातों रात तारीफें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन तारीफों में तुम मत आना। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाती है उतनी ही जल्दी नीचे भी गिराती है। तो चलिए, ऑन दिस नोट मैं आरजे नुपुर सारा अली खान की बात से सीख लेकर आगे निकलती है और अभी साइनिंग ऑफ करती है। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
4: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
5: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
4: थैंक यू,
6: थैंक यू,
3: थैंक यू, थैंक यू, वी लव यू।
7: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Singapore. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235 8840. Terms and conditions apply.

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
0: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अपने दिमाग के बैकग्राउंड ऐप्स को जल्दी से क्लोज करो, फटाफट फटाफट फटाफट, यहाँ किसी और की जगह नहीं है। बिकॉज मैं हूँ आपकी अपनी मुग्धा, जो की आ चुकी है आपके साथ ऑन योर रेडियो सेट डायरेक्ट मेरे सिंगापुर के प्यारे कूल कूल स्टूडियो से। हेलो वेलकम, दिस इज मी मुग्धा आपके साथ एंड ये है रेडियो मस्ती का 24/7 लाइव एंड द शो इज ऑफ कोर्स मस्ती हैंग आउट। आज क्या है, आज है 20th of May यानी कि वेंसडे। हाँ, एक अल्टीमेट हम्प डे है ये, पता है क्यों? कैलेंडर उठा करके आप देखोगे ना तो आज दो बड़े अजीब पर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज है वर्ल्ड बी डे, बी बी मधुमक्खी, और दूसरा है वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे, यानी कि आज के दिन मीटर जिसे नापते हैं ना वो जो है इन्वेंट हुआ था, नॉट वो आसमान वाला मीटरोलॉजी, नहीं नहीं वो नहीं। सो आज का दिन है ना काफी इंटरेस्टिंग और अजीब से दो दिन। वैसे बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे हॉलीवुड में तो वैसे मधुमक्खियों पे पिक्चर्स भी काफी बन चुके हैं। खैर, अब सोचो हनी बीज ना हमें मल्टीटास्किंग और कम्युनिटी बनाना बेसिकली सिखाती है, उसकी इंपॉर्टेंस। और ये जो मीटरोलॉजी है ये हमें सिखाती है कि लिमिट्स कैसे सेट की जाती है। तो हम क्यों ना इन दोनों को मिक्स कर दें आज, है ना? आज हम अपनी लाइफ से उन लोगों को मेजर करते हैं और मेजर करके बाहर निकाल देंगे जो सिर्फ बी हाइव की तरह हमारे दिमाग में बज करते रहते हैं। वाओ अमेजिंग आइडिया, और बिना वजह का स्टिंग देते रहते हैं फालतू में, है ना? सिंपल सा काम है, नेगेटिव एनर्जी को कैंसिल करो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। चिल ट्रैक लगाएंगे मेरे साथ आने वाले 3 घंटों में, अमेजिंग गाने एंजॉय करेंगे। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, स्टे कनेक्टेड। जोश में रहो।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक, मैं हूँ मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पे, डायरेक्ट फ्रॉम सिंगापुर का हमारा अपना ठंडा स्टूडियो। अभी ना एक खबर है और उसपे एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है और वो काफी आई ओपनिंग है हमारे सिंगापुर के बारे में, तो मुझे लगा कि ये बात आपसे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि सिंगापुर के जो गिग वर्कर्स है ना, जैसे कि हमारे ग्रैब ड्राइवर्स एंड राइडर्स, ये कुछ ज्यादा ही एंग्री और पैसिव अग्रेसिव, इमोशनली एग्जॉस्टेड ऐसे दिख रहे हैं। पर सोचो यार, जो बंदा 12 से 14 घंटे सिर्फ सर्वाइवल के लिए ड्राइविंग कर रहा हो, फ्यूल प्राइसेस, रेंट्स, इन सब की मार भी झेल रहा हो, स्माइल कितना करेगा और कैसे करेगा? सच तो यह है कि उनका ये गुस्सा ना पूरे सिंगापुर का एक कलेक्टिव बर्नआउट मिरर हो रहा है, जहां पे आप अपने आप का देख सकते हो इमेज गुस्से वाला, जहां पे सबको ये लग रहा है कि वो एक एंडलेस ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं एवरी सिंगल पर्सन। इस फिनोमिना पर ना एक बात याद आई, सोशियोलॉजी में इस कंडीशन को कहते हैं एनोमी या द रैट रेस पैराडॉक्स, जहां पे रिलेंटलेस मेटोक्रेसी और हाइपर एफिशिएंसी ना इंसान को एक मैकेनिकल सर्वाइवल मोड में डाल देती है, धकेल देती है, जहां से एम्पैथी गायब हो जाती है और

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। सो माय डियर सिंगापुरियंस, कल हमने मेटा मूवीज और फेक सेट्स की बात की थी, मतलब अपने लास्ट शो पर। आज मैं एक ऐसी रियल लाइफ कहानी लेकर आई हूँ जो हमारी इस मॉडर्न सिटी की लाइफ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंगापुर में माइग्रेटरी बर्ड्स की मौत का जो आंकड़ा है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है इन 2026, समझ रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट आपको पता है कौन है? कोई प्रीडेटर नहीं है, बल्कि हमारी कांच की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दीज रिफ्लेक्टिव ग्लास विंडोज जो है ना, वो बेचारे परिंदे धूप और आसमान के रिफ्लेक्शन को असली समझते हैं और आके उनसे टकरा जाते हैं, बैंग। उनका जो माइग्रेटरी हाईवे है ना, वो हमारा ये जो आशियाना है ना, ये कांच का आशियाना, दिस कॉन्क्रीट जंगल, उसमें आके तबाह होता जा रहा है। इसी नेचर सिटी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा आता है आज का मेरा इंटेलिजेंस कैप्सूल। डू यू नो कि मॉडर्न आर्किटेक्चर में अब एक नया एवोल्यूशन आ रहा है जिसे बर्ड सेफ डिजाइन या फिर फिटेड ग्लास टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें कांच पर टाइनी टाइनी पैटर्न्ड सिरेमिक डॉट्स बनाए जाते हैं जो इंसानों को तो दिखते नहीं है पर बर्ड्स को रास्ता ब्लॉक होने का साफ सिग्नल दे देते हैं, ताकि कोई भी पंछी आके उसे दौड़ करके टकराए नहीं।

एंड ये छोटा सा बदलाव जो है ना, ये कितनी जाने बचा सकता है और हमारे सिंगापुर में इस आंकड़े को कितना कम कर सकता है, आप समझ सकते हो, है ना? आई नो, आई ऐसी बात पे अमेजिंग ट्रैक हो जाए, स्टे कनेक्टेड.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ अपने स्टूडियो से सीधा लाइव आपके रेडियो सेट्स तक। यू नो व्हाट कहते हैं कि अगर आपको घर पर कच्चे आम जल्दी पकाने हैं तो उनको आप क्या करेंगे, चावल के डिब्बे में बंद कर देंगे या प्याज के साथ बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आम है वो जल्दी पक जाता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि प्याज और चावल नेचुरली एक तरह की गैस को रिलीज करते हैं जो फल को बिना किसी टॉक्सिक केमिकल के एकदम सेफ तरीके से और मीठे तरीके से पकाती है। लेकिन इतना कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, यू नो व्हाई, बिकॉज हमारा जीजी मार्ट है ना। पहली बात तो आपको कच्चे आम मिलेंगे नहीं, जो गिरे आप उठा सकते नहीं हो, तो घर पे आम पकाने की कोई जरूरत नहीं है। ggmartonline.com पे जाइए, वो सीधा फार्म से फ्रेश देवगढ़ और रत्नागिरी फार्म जो है सिंगापुर लेकर के आए हैं। प्योर प्रीमियम क्वालिटी फ्रूट्स है उनके और हमारे लिसनर्स के लिए एक स्पेशल ट्रीट। यू नो व्हाट, अगर आप ऑर्डर करते हैं और एक कोड है जिसको अगर आप यूज करते हैं, दैट्स न्यू 10, मस्त आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड एक और बात, अगर आप 70 सिंगापुरियन डॉलर्स के ऊपर का कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, फ्री डिलीवरी है बॉस, क्या चाहिए और, मैंगो की जान लोगे क्या? यू नो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर चल रहा है अभी। अगर आप ggmartonline.com की वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे रजिस्टर करते हैं, एंड आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर पे भेजते हैं, दैट इज 9151893, तो आपको मिलता है एक्सेस, यानी अलग से और भी डिस्काउंट वाउचर्स। तो जब मैं क्या कहती हूँ उसको, आम के आम गुटलियों के दाम है, तो अब क्या सच में आमों की जान ही लेके मानोगे? निकाल तो ली गुटलियां भी, चूस ली आम भी, ले लिया बस भी करो यार, अब गुटलियां इकट्ठा करके पेड़ लगाना अगली बार। खैर, तो ये जो है ना, आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। इसी से मुझे एक और बात याद आई, और वो बात सिर्फ इतनी है कि चलो आप मंगाओ और गाने एंजॉय करो बस।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक नखरे बाज नसीब वाली और दूसरी मेहनत की मिसाल। वेल वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एंड दिस इज द बॉलीवुड आर। क्या बॉलीवुड के सेट पर गुस्सा निकालना जस्टिफाइड है या फिर डेडिकेशन ही आपको लेजेंड बनाता है? That's a big question. सोचो अगर कोई सुपरस्टार डांसर किसी के गिरने पर चिल्लाकर सेट छोड़ दे। जी हाँ, सरोज खान के पुराने किस्से कुछ हैं बाहर आए हैं, जहां पर करिश्मा कपूर एक गलती पर बैकअप डांसर पे भड़क गई और उसे इडियट कहा और शूट से वॉकआउट कर गई, ये फिलहाल खबरों में है। पर वहीं एक तरफ इसी इंडस्ट्री में एक ऐसी डीवा है जो डोला रे डोला की, उनका जो एक पूरा गाना है उसका एक बहुत ही मुश्किल स्टेप था उसके लिए, वो बुखार में थी, उन्हें चक्कर आ रहे थे एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, शी वॉज 4 months प्रेग्नेंट। उसके बावजूद 13 घंटे तक लगातार वो रिहर्सल्स करती रही बिना एक शिकायत के। ऑफ कोर्स हमारी अपनी माधुरी दीक्षित। ये जो डीवा क्लैश है ना, ये बॉलीवुड में बहुत आम बात है। हालांकि इट्स नॉट अ क्लैश, लेकिन ये दो अलग अलग लोगों की अलग अलग इमेज है जो कि बॉलीवुड हमें दिखा रहा है। सिनेमा में जब कोई आर्टिस्ट ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में परफॉर्म करता है तो उसे द शो मस्ट गो ऑन डॉक्ट्रीन कहते हैं, जो एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक ट्रू लेजेंड के बीच का फर्क साफ कर देता है। प्रोफेशनल एंड अ ट्रू लेजेंड, समझे? आप क्या बनना चाहते हैं, लेजेंड या प्रोफेशनल?

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक ऐसी मूवी जो सेट्स पर 50 या 100 नहीं बल्कि पूरी एक मिनी जेनरेशन लेकर उतर चुकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल इंडियन फिल्म के लिए पूरे ग्लोब से हजारों लोग दिन रात एक कर रहे हैं? ना, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा बूम धमाका होने वाला है। बॉलीवुड की एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, रणबीर कपूर की आने वाली जो मैग्नम ऑपस फिल्म है ना रामायण, वो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रही है, बना दिया है उसने। ये भारत की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा ग्लोबल क्रू मेंबर्स को ऑन बोर्ड किया गया है। VFX से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक दुनिया भर के टॉप नॉच टेक्नीशियंस जो हैं इस महागठबंधन का हिस्सा हैं। वाओ! और इस मेगा स्केल मूवी से जो जुड़ जाता है या जुड़ा आता है वो है मेरा इंटेलिजेंस कैप्सूल। सिनेमा की भाषा में जबकि इसी फिल्म पर इतने बड़े स्केल पर इंटरनेशनल क्रिएटिव और टेक्नीशियन टैलेंटेड कोलैबोरेट करते हैं, टैलेंट्स इनफैक्ट कोलैबोरेट करते हैं, तो उसे ग्लोबलाइज्ड को प्रोडक्शन या फिर ट्रांसनेशनल फिल्म मेकिंग कहते हैं, जो कि लोकल स्टोरीज को ग्लोबल स्केल पर लेकर जाता है। इतना इंटेलिजेंस कैप्सूल दे रही हूँ, आप तो कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे अगर उन्होंने ये सवाल पूछे तो।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: क्या हम वक्ती तौर पर बिछड़ते हैं या कुछ अधूरे रिश्ते सदियों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते? एक ऐसी मोहब्बत जो कि 1947 के बंटवारे में छूट गई थी और एक बीमार दादाजी की आखिरी ख्वाहिश बन के पूरे 78 ईयर्स के बाद उनके पोते के दिलासे का इंतजार कर रही है। डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली वापस आ चुके हैं वो अपनी पुरानी आइकॉनिक स्टोरी टेलिंग के साथ, और उनकी आने वाली जो फिल्म है मैं वापस आऊंगा उसका ट्रेलर आउट हो चुका है, और इसके आते ही और इसने आते ही सबकी आंखें नम कर दी। फिल्म में नसरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ प्रेजेंट डे में हैं, जबकि वेदांग रैना और शर्वरी जो हैं पार्टीशन के दौरान के उस कहले दर्दनाक अधूरी दास्तान को जी रहे हैं, जिसे एआर रहमान का संगीत और भी ज्यादा इंटेंस बनाता है। इस इमोशनल लॉन्गिंग से एक बात मुझे याद आई, जब कोई कहानी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कंटिन्यूसली स्विच करती है और एक गहरा मैसेज देती है, इनफैक्ट इसीलिए बनाई गई है, तो एक टर्म है नॉन लीनियर इंटरजेनरेशनल नैरेटिव। इट्स ऑल अबाउट मूवीज एंड सिनेमा। इतना समझ या इतना सुना है कि अब धीरे धीरे टर्म्स एंड कंडीशंस भी पता लगने लग गए हैं। यहाँ पे क्या होता है, सदियों पुराने जज्बात आज के सच से टकराते हैं तो कहानी

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: 1/2 kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक ऐसी एक्ट्रेस है जो जुब जुब जुब गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है, पर इस बार उनका ये जो बदला हुआ रूप है वो देखकर आप पहचान ही नहीं पाएंगे इनको। क्या एक आर्टिस्ट के लिए अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल्स पर चेंज करना इज जस्ट अ ट्रेंड, या फिर ये वाकई में अपने कैरेक्टर के प्रति एक बहुत ही सच्चा डेडिकेशन हो सकता है? वेल, बहुत सी एक्ट्रेसेस ने पहले भी किया है, एक्टर्स ने भी किया है, एंड रीसेंट में यह आता है मोना सिंह के नाम पे। बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है ये बॉलीवुड की, और पता यह लगा है कि उन्होंने अपने आने वाला एक मेगा शो है उनका पान पर्दा जर्दा, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग, उसके लिए एक बहुत ही बेहद हैरत अंगेज और बहुत ही स्टनिंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए उन्होंने खुद को तैयार किया है। उनका कैरेक्टर बहुत ही इंटेंस है, दिन रात एक करके बहुत वेट लूज किया है ताकि वो इस बहुत ही रॉ और बहुत ही रस्टिक यूनिवर्स में फिट बैठ सके। क्यों रॉ और रस्टिक यूनिवर्स में पतले लोग ही फिट बैठते? खैर अभी तो कैरेक्टर पता नहीं है। यस, आई डू हैव एन इंटेलिजेंस कैप्सूल फॉर दिस ऑल्सो। एक्टिंग की दुनिया में जब कोई एक्टर ना कैरेक्टर के हिसाब से अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल देता है तो उसको कहते हैं कैमेलियन एक्टिंग या फिर मेथड फिजिकलिटी। जी, अब मैं एक्टर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे सब पता है।
2: जी करता

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीबॉडी, शो के थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी मुग्धा, डायरेक्ट फ्रॉम आर रेडियो मस्ती के स्टूडियो से। अभी तक आपने जो भी जॉब रिजेक्शंस हैं अजीबो गरीब वाले आपने देखे होंगे, बहुत से अजीबो गरीब बहाने भी आपने सुने होंगे, है ना, लाइक लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या आप यहाँ कल्चरली फिट नहीं हो रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पर क्या आप सोच सकते हो कि किसी को ऐसी डिग्री ना होने पर रिजेक्ट कर दिया गया हो जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है? Yes. एक वायरल पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट ने एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया जहां पे उसके लिए रिजेक्ट कर दिया गया उसको, क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री नहीं थी। नाउ कम्स द शॉकिंग पार्ट। शॉकिंग बात यह है कि पूरे यूनिवर्स में, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट ही नहीं होता है भाई। HR डिपार्टमेंट ने खुद अपना एक इमेजिनरी सब्जेक्ट बनाया और कैंडिडेट को निकाल दिया। रिक्वायरमेंट था मास्टर्स डिग्री इन मेकर स्पेस मैनेजमेंट। Oops, that doesn't even exist, bro. जी, रिजेक्शन के बाद जो एप्लीकेंट है उसने इन्वेस्टिगेट किया डिग्री के लेजिटिमेसी के बारे में, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि ये एक एंटायरली फिक्शनल डिग्री है और ये कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड यानी यूनिवर्स वाइड कहीं नहीं देती है। कमाल है भाई, अगर किसी को नौकरी पे नहीं रखना है तो उसके और 50 बहाने दे दो। पर ऐसी पोस्ट क्यों निकाली जिसके लिए ऐसी डिग्री चाहिए जो कि किसी के पास है ही नहीं, और अगर किसी बंदे ने आपकी डिग्री की कॉपी आपको ला के दे दी तो फिर तो मैं नहीं जानती कि बेवकूफ कौन है, आपकी कंपनी या वो बंदा ज्यादा स्मार्ट है जिसको मालूम है किसी को डिग्री नहीं है पर ये फेक है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने मांगी है।
2: मिठा
1: हंसता भी जाओगे बिड़ू, लेकिन नहीं, बट दिस इज टू मच यार।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजी मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक। मस्ती हैंग आउट पर आप सुन रहे हैं मुग्धा को। बॉस, हम जब बच्चे थे ना तो मिट्टी में खेलते थे और ज्यादा से ज्यादा वक्त ना मिट्टी के अंदर इधर खोदा उधर खोदा। क्या होता था, खोदा खादी करी मिट्टी में और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता था, कोई पुराना सिक्का मिल जाता था, कोई खिलौना मिल जाता था, लकड़ियां मिल जाती थी, पत्थर मिल जाते थे। सोच के तो हम ये खोते थे हमें कोई एंशियंट कोई चीज मिल जाएगी, पर नहीं। पर सोचो अगर कोई बच्चा मिट्टी से खेलते खेलते सीधा इतिहास के पन्नों को जमीन से बाहर निकाल कर ले आए तो एक ऐसी खबर आई है, मैजिकल कहानी लगती है। नॉर्वे में एक साल का छोटा बच्चा था। उसने घर के पास में एक ढलान है, वहां पर वो खेल रहे थे। अचानक से वहां एक अजीब सी लोहे की चीज जो है वो दिखाई देती है। जब आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया तो सबके होश उड़ गए। भाई, वो कोई मामूली लोहा या ऐसी कोई चीज नहीं थी, 1300 साल पुरानी प्री वाइकिंग एरा की तलवार थी वो। वाइकिंग एरा की तलवार, सोचो जो इतिहास बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढते हैं, वो इस बच्चे को खेलते खेलते मिला। तलवार उसकी हुई ना, उसने ढूंढी ना। You know what? आर्कियोलॉजी की दुनिया में, yes, I do have that intelligence capsule का term. आर्कियोलॉजी की दुनिया में जब कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट बिना किसी प्लान्ड एक्सकेवेशन के अचानक से और किस्मत से मिलता है तो उसे कहते हैं सिरेंडिपिटस डिस्कवरी। देखा, मैंने इजाद नहीं कि ऐसा कहते हैं। हाँ, ये ना अक्सर पुरानी सिविलाइजेशन को अनकही राज जो है उनके वो खोलता है, तो इसको यही कहते हैं।

0: बगल में।
1: देखा, किस्मत हो तो ऐसी। चलिए इसी बात पे एडवेंचरस गाना हो जाए।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारा ये जो 3 घंटे का सफर था वो यहीं पर खत्म होता है ना। सॉन्ग फॉर दैट, गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा, तमाशाई बन जाएंगे खुद तमाशा। ओके फाइन, मैं नहीं गा रही। तो जी 3 घंटे का सफर यहाँ पे खत्म होता है। आपकी मुग्धा अब यहाँ से जा रही है अपने स्टूडियो से, सिंगापुर से नहीं। हमने सिंगापुर में बढ़ते गुस्से की बात की, 1300 साल पुरानी वाइकिंग्स की तलवार की बात करी, मान न मान मैं तेरा मेहमान मंकी एनक्लोजर की बात करी, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करी जो कि बहुत अलग अलग सिनेमाई और साइकोलॉजिकल तौर पर कहे जाते हैं। अब मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ ना वो सुनो, समझो। लाइफ में अगर थोड़ा गुस्सा या स्ट्रेस आ रहा है ना तो उसे टेम्पररी समझो। हम सबकी जो भाग दौड़ है ना, इतने बिजी हो चुके हैं हम कि भूल जाते हैं कई बार कि रुकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही जितना भागना। तो थोड़ा रुको, थोड़ा सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ। मेरी योगा टीचर थी एक, पहले वो ऐसे कहती थी, टेक अ डीप ब्रेथ। याद रखो, कल एक नया दिन होगा, एक नई सुबह होगी, एक नया काउंटडाउन शुरू हो जाएगा लाइफ का। आप इस काउंटडाउन से नहीं भाग सकते, लेकिन अपने स्ट्रेस को कम जरूर कर सकते हो। सो इट्स अ साइन ऑफ जी। और इसी साइन ऑफ से जुड़ा हमारा एक और इंटेलिजेंस कैप्सूल आता है इन आर रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग टर्मिनोलॉजी में। जो शो का आखिरी पार्ट आता है तो उसको हम कहते हैं द एंकर ड्रॉप। जी, वो आखिरी हुक जो लिसनर्स को अगले शो तक आपकी फ्रीक्वेंसी से बांध के रखता है। मुझे तो नहीं पता कि आखिरी हुक आपको बांध के रख पाया या नहीं, मैं किसी को बांध के रखना भी नहीं चाहती। मेरा जो मानना है वो ये, छोड़ दो, बिल्कुल प्यार वाले अंदाज में छोड़ दो। अगर आपको मेरा शो पसंद होगा, आपको मुझसे प्यार होगा, तो आप जरूर वापस आएंगे बिना मेरे बांध के रखे पर। अब ये टर्म है तो है, मैं आपको इसी हुक के साथ छोड़ के जा रही हूँ अगले शो तक के लिए। यही मिलना, ओके बाय।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: अर्जुन आएंगे
5: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आना चाहिए। आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।

0: मोर्चे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बी।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
5: तुमको
4: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
5: मुझे चांद पे ले चलो।
4: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
5: रात।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
1: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. Josh Mero.
4: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
5: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज
1: भाई, जब मिले आप और मैं तो मजा ही मजा तो होना ही है ना. ऊपर से आज है वेंसडे. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर बिल्कुल जुड़ चुकी है. टन टन 5 बजकर हो चुके हैं यहाँ पे स्टूडियो क्लॉक में. 5 मिनट वेंसडे वाले दिन हम पहुंच चुके हैं. इट इज अ वेरी मीठा मीठा स्पॉट ऑफ द वीक विच वी चेरिश एंड विच वी लव कम्प्लीटली, है ना, है ना. बहुत ही मजे आते हैं यार वेंसडे को. ऐसी अच्छी वाली फीलिंग आने लगती है. पहले हमको ये फीलिंग थर्सडे को आया करती थी कि यार मीठा मीठा लग रहा है, बस फ्राइडे कल है. बट अब धीरे धीरे इफ यू हैव नोटिस्ड, हमने ये शिफ्ट कर दिया है. वेंसडे को अब ये फीलिंग आने लग गई है. आप देखना 5-10 साल में मैंने ये फीलिंग मंडे तक ले आनी है कि मंडे आते ही हम कहेंगे कि मीठा मीठा फील हो रहा है, फ्राइडे जरूर आएगा. My goodness, seriously, that is going to be one hell of a Monday. So Radio Masti 24/7 live midweek blues यहाँ पर. कौन से blues यार? I think हमारे तो mood already change हो ही रखे हैं. अच्छा, have you seen the video I just shared हमारे social media page, Facebook page पे? मैं तब से, अच्छा, that particular video actually changed my mood. सीरियसली, मतलब एक तो मैं ऐसे ही यू नो आई डू द 90s शो, तो मेरा दिमाग भी इतना ज्यादा 90s चलता है ना. एंड द मोमेंट आई सॉ, मेरे तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा. मैंने कहा ये क्या सोच रही हो तुम अंतरा, चलो शो करते हैं. लेकिन वहां जाके अपने दोस्तों से भी पूछेगी अंतरा कि भाई आपके दिमाग में आया ना. चलो, लाल पीली अखियां, नॉट माइन, नॉट योर्स, नॉट एनीबॉडीज. इट इज द गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. Good evening.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
5: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
6: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Musti 24/7. Our mood change kare.
7: Welcome back, सुशांत रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं मात्र आपके साथ 5:00 हो चुके हैं 17 मिनट। कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता है ना कि इनको बड़े मजे आते हैं आस पास में। जब मैं शो कर रही होती हूँ तो वैसे चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, आज इसको ही डिस्टर्ब करते हैं, बट एनीवेज ये सारी चीजें करती रहेंगे, बट हम आपको यहाँ पर जो खबर देनी है वो बिल्कुल देते रहेंगे। भाई इतनी सारी चीजें हो रही है ये सोशल मीडिया और AI को लेकर, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास बैक टू बैक खबरें हैं ऑन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कि आजकल सच में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेट मी स्टार्ट विद माधवन। ओके, माधवन यानी कि हमारा माजी, इन्होंने पहले भी कई बार कहा हुआ है कि अगर इस तरह के स्कैम का कुछ इस तरह का होता है कि आपको कोई कनेक्ट करता है DM के थ्रू कि मैं मैरी हूं और मैं पर्सनली जो है अपना मूवी प्रमोट करना चाहता हूँ कुछ, तो प्लीज उनकी बातें नहीं सुने, विच इज ऑब्वियसली ठीक है, वो तो नहीं ही करना है। बट उसी के साथ साथ कोई एक बड़ी सी नहीं, जस्ट सम स्टोर और कंपनी, ओके, जॉइन एलिवेट नाउ ऐसे करके उनका नाम है, एंड इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हाट दे हैव डन इज कि माधवन का कोई बहुत पुराना जो है इंटरव्यू, सो शुरू में इनके एड के वीडियो में आते हैं एक डॉक्टर साहब कुछ कुछ कहते हैं और माधवन का कोई एक रिप्लाई फ्रॉम वन ऑफ हिज ओल्ड इंटरव्यूज, दे हैव जस्ट कट पेस्ट पैच्ड एज द डॉक्टर के सवाल के जवाब का रिप्लाई, एंड दे हैव सेड दैट सी जब माधवन हमारे से करा रहे हैं तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आज भी मतलब आज ही आप अपना जो है एनरोल करें। या इट इज लाइक दैट, इट्स स्कैरी। And he has posted the same thing over there, that how do these people and organization think that they can get away with this? You cannot take a clip of somebody's interview and make it a part of your endorsement. Legal notice have been sent to them. Please beware of these kind of professionals and organizations. फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा हर मोमेंट हर पल, बिकॉज इट इज कैरी आउट देयर लाइक इट इज रियली। सच्ची में सेम थिंग हैपेंड जो है हाल ही में विद द डीप फेक वीडियो एंड एवरीथिंग। हैव यू सीन हाउ रियल इट लुक्स? बहुत ही ज्यादा जब आप जूम इन करके देखते हो तब जाके आपको अंदाजा लगने लगता है कि शायद इसमें कोई बात है या नहीं है। बट व्हेनेवर समवन इज आस्किंग रैंडमली अबाउट योर पासवर्ड, अबाउट योर ATM पिन और एनीथिंग, जस्ट नो, जस्ट एक डिफॉल्ट लगा लो, नो कोई भी नहीं, मेरे अलावा कोई भी नहीं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आपकी आंखें खुली है या है बंद, बताओ बताओ। 5:30 हो चुके हैं, चलिए सीधा चलते हैं। यहाँ पे सड़कों पर आंखें खुली ही रखनी है और ट्रैफिक का अपडेट कुछ ऐसा है। हेवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन KJE टुवर्ड्स BKE एंड BKE वुडलैंड्स एग्जिट। हेवी ट्रैफिक की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी बिटवीन BKE एंड बुकेतमा रोड। और मिलेगा हेवी ट्रैफिक ऑन लॉर्नी वायाडक्ट टुवर्ड्स ब्रैडल बिटवीन लॉरोंग 6 टोपायो एंड अपर थॉमसन रोड। यह रहा ट्रैफिक का अपडेट। गाना कुछ ऐसा है कि देखो भूल भुलैया के आए तीन पार्ट, तीनों में था एक गाना कॉमन, ठीक है। तो अभी थर्ड पार्ट वाला सुन लेते हैं और बिल्कुल वापस आके बताते हैं कि क्यों पहुंचे अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल, या फिर पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे कि वो भी फेक न्यूज है। बड़ा कंफ्यूजन है जी, बड़ा कंफ्यूजन। गुड इवनिंग।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: एक तो कोई भी हॉस्पिटल जाता है ना, मतलब सेलिब्रिटीज की मैं बात कर रही हूँ, वो तो ऐसी ही सांसें ऊपर नीचे हो जाती है कि मतलब क्या है, क्यों तो ऐसी बातें फैलाओ ही क्यों यार, जस्ट बिकॉज यू हैव सोशल मीडिया, क्या करोगे तुम लोग? ऐसे ऐसे नहीं होता, हम नहीं खेल रहे ये गेम, हमसे नहीं हो रहा है अब. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मिड वीक ब्लूज. भाई हालात, जज्बात, मूड सब कुछ बदल जाता है जब बातें कुछ ऐसी फैलने लगती है. सो हुआ कुछ ऐसा था अमिताभ बच्चन जी, ओके सो रूमर्स कुछ ऐसे उड़े कि बच्चन साहब जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है ड्यू टू स्टमक रिलेटेड इश्यूज. एंड दिस खबर वेंट ऑन लाइक वायरल होने में तो देर इज कोई 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं, राइट? सो हाँ, अब उनके फैन बेस भी इतना स्ट्रॉन्ग है एंड एवरीबडी वाज कंसर्न्ड कि भाई क्या हो गया, मतलब वी डोंट लाइक, राइट? वी डोंट लाइक दैट थॉट, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. सो रिपोर्ट्स कुछ ऐसी क्लेम कर रही थी दैट मेगा स्टार जो है वो मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था एंड ही वॉज स्टेइंग, आप बारीकियां देखे जरा डिटेल में, ही वॉज स्टेइंग इन द VIP विंग फॉर सेवरल डेज एंड इवन उन्होंने तो अभिषेक बच्चन जो है उनको भी विजिट करते हुए देख लिया वहां पे. नाउ there are another set of sources who are saying they have clarified that those reports jo pehle inhone di thi they are false. According to these new reports, these sources say Mr. Bachchan had only visited hospital for his routine monthly checkup on Saturday and returned home the same day. अब ऐसा है लेडीज एंड जेंटलमैन, कपिल शर्मा जो है उन्होंने कोई तो एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की थी कि कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हो ना जो बहुत सारा कुछ बोलते हैं और मतलब बहुत ज्यादा ही बोलते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि इनका मुंह कैसे बंद करें. तो जब वो बोल रहे हो कि भाई हमारे खिड़की पे हाथी उड़ के आया था और बैठा था, तो उनसे ये कहना चाहिए कि हाँ हाँ हमारी खिड़की पे भी आया था, बैठा था, हमने तो उसको दाने भी खिलाए थे, तो उसने सूर से उठा के दाने भी खाए थे. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आई थिंक सोशल मीडिया अब ऐसा ही हो गया है कि मतलब हाँ हाँ तुम्हें बोलना है तुम बोलो, जब तक ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आती है कोई बात या नहीं विश्वास करेंगे, हम तो नहीं करेंगे. एटलीस्ट मैंने तो डिसाइड कर लिया है, उफ क्या ही करें. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल गाने प्ले करेंगे, वो भी अच्छे अच्छे, क्योंकि मूड, हालात, जज्बात एक चीज जरूर बदल सकता है, गाने. अच्छे गाने प्ले करते हैं जिगर एंड प्रिया, कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change karein.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, 5:49 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. मैं हूं अंतरा, आपके साथ चल रहा है मिड वीक ब्लूज. भाई सोशल मीडिया पर काफी सारी बातें जहां पर एक तरफ छाई हुई है, वहां पर कुछ दिनों पहले ही आलिया भट्ट काफी छाई हुई थी क्योंकि चल रहा था कैन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, और वहां पर वो पपराजी वाला एक पर्टिकुलर मोमेंट उससे वायरल कर दिया. इनफैक्ट आलिया भट्ट की मम्मी जो है वो भी सोशल मीडिया पे आके कहा कि भाई ये कैसी जगह बना दी है तुम लोगों ने इंटरनेट की, कोई भी यहाँ पे सेफ फील ही नहीं कर सकता. इतना हेट्रेड क्यों है, इतना किसी को पुल डाउन क्यों करना है, क्या मिल जाता है यहाँ पे लोगों को किसी से. दिस इज वन थिंग. फिर आते हैं अनदर. भाई समय रैना इज बैक. तो समय रैना जो है क्विक वन, इन्होंने एक शो शुरू किया था इंडियाज गॉट लेटेस्ट, इट वॉज प्रिटी पॉपुलर, ओके, बट एक एपिसोड ने पूरी कहानी बदल के रख दी जहां पर बियर बाइसेप्स ऑल्सो नोन एज रणवीर अलावादिया एंड अपूर ओवा करके एक और इन्फ्लुएंसर है, तो इन लोगों के बीच में और उस शो में और जो आए थे काफी कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया एंड इनके चैनल शट डाउन कर दिए गए एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. अब आप कहोगे अंतरा इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, लाइक वे आलिया भट्ट एंड व्हाट समय रैना. द थिंग इज हाल ही में सोशल मीडिया पे एक लीक हुई है पिक्चर. सो इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 इट्स गोइंग टू बी बैक. अब ये तो पता ही चल गया था बिकॉज समय रैना ने अपना स्पेशल किया था, उसमें उसने कहा था कि भाई हम मैं लेके आ रहा हूँ वापस से. द थिंग इज कि इस वाले जो है इंडियाज गॉट लेटेंट का सेकेंड सीजन में नजर आई शर्वरी एंड उनके साथ नजर आई आलिया भट्ट. That is right. उस सेट में पता नहीं किसने तो लीक किया, जिसने भी किया हो उसको उसके पैसे तो मिल ही गए होंगे. But आलिया भट्ट एंड शर्वरी they have gone viral for this reason and they have sparked this mixed reactions among the fans. So actresses were reportedly filming for the show as a part of promotions अपनी upcoming film Alpha के लिए. और ये photograph जो है it was clicked by an audience member during the taping and also featured comedian Ashish Solanki and Balraj Ghai साथ साथ में. अब किसी ने किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किस चीज के लिए दोनों हमारी एक्ट्रेसेस वहां पे पहुंची हुई है. उन्होंने बस देखा ओ कॉन्ट्रोवर्शियल समय रहना इंडियाज गॉट लेटेंट, ऐसे वाले शो में आलिया भट्ट क्या कर रही है, क्या क्या चल रहा है. इन्होंने अपनी कहानी खुद ही बना ली होगी, अब तक तो हमारा तो कुछ कहने का कुछ बनता ही नहीं है. बट सीरियसली दीज आर द टाइम्स वी आर लिविंग थ्रू. बड़ी मेहनत है यार. रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर इसकी उसकी कान किसकी यारा दा इमान उसकी उस सब पे चिकन हो तो और वधिया. ये थी पूरी लिरिक्स, गाना आप पूरा फिलहाल यहाँ पे सुन लीजिए रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर.
2: Thank you.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ. एंड यहाँ पर 6 बजे के उस पार पहुंच चुके हैं. 6:05 हो चुके हैं. मिडवीक ब्लूज चल रहा है. और भाई ब्लूज तो मुझे ऐसा लग रहा है सलमान खान के आसपास ऐसे कोई भी पहुंच जाएगा तो वो उनका मुंह जो है वो नीला जरूर कर देंगे. वो गुस्से से ब्लू होते हुए आज की रेट में वो नजर आए. एंड देन ही गेव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया एज वेल. तो कुछ हुआ ऐसा कि आई थिंक कल परसों की बात है. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सलमान खान क्वाइट अ लॉट राइट. पहले तो उन्होंने वो शर्टलेस वाली फोटो डाली और बोला लोनली अलोन. फिर नेक्स्ट डे कहा कि नहीं मैं तो मतलब मैं अकेले कैसे हो सकता हूँ, आप सब हमारे साथ हैं. एंड अगेन टुडे ही इज ऑल ओवर द न्यूज. अब देखो क्या होता है ना कि ये पेपराजी का कल्चर ये ना आपके नाक के अंदर नॉस्ट्रल के अंदर ऐसे ऐसे घुस जाता है. दे नो नो बाउंड्रीज. मतलब कुछ तो बहुत ही ज्यादा अनोइंग होते हैं कि मतलब आप कोई सेंसिटिविटी और ये सारी चीजें तो उनके डिक्शनरी में आती ही नहीं है. दे आर कंप्लीटली ड्रिवन बाय भाई. भाई का फोटो जाएगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा. दे आर ड्रिवन बाय मनी. सो वेल कुछ हुआ समा कुछ ऐसा बंधा कि हमारे सलमान खान जो है हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे किसी को देखने के लिए. एंड थ्रू द बैक डोर वो बाहर आए. अब ये सारे पेपराज़ी जो है पहुंच गए अपना अपना फोन लेकर कि भाई इधर. एंड सलमान खान गॉट रियली रियली एंग्री. एंड ही रियल मतलब बहुत डांटा उनको कि तुम लोग का अकल नहीं है. एंड ऑल ऑफ दिस काफी सारी चीजें म्यूट भी कर दी गई थी. बट हैविंग लॉस्ट ऑल ऑफ हिज कूल उसके बाद जो है सोशल मीडिया लेकर अपनी ही लैंग्वेज में उन्होंने लिखा ऐसे मैं 100 जला दूंगा भाई एक बार दुख पर अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ. बस ट्राई कर लेना. जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा क्या मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा जैसे तुम लोगों ने किया है. बट इफ दे वांट मेक मनी फ्रॉम माई लॉसेस कीप क्वाइट डोंट एंजॉय. भाई मातृभूमि पिक्चर की मैं बोल भी नहीं सकती वो ऑन एयर. पिक इंपॉर्टेंट है या किसी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है. देन अगेन ही सेड इफ आई सी एनी प्रेस एट अ हॉस्पिटल एंजॉयिंग माय पेन द प्रेस दैट आई हैव स्टूड फॉर इंटरैक्टिंग विद देम बट टेकन केयर मेड श्योर दैट दे ऑल्सो अर्न देयर ब्रेड एंड बटर. 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला हूँ ये याद रखना. जेल में डालोगे डाल के बताओ. ये वैसे सुल्तान का डायलॉग था जिन्होंने जो बोला कि इतने साल का हो क्या हूं पर लड़ना नहीं भूला हूं. बट देन व्हेन ही सेज इट एंड ही मींस इट. ही वाज रियली रियली रियली एंग्री दिस टाइम अराउंड विद ऑल दीज पीपल. सच में यार थोड़ा सा सेंस अगर आ जाए तो कितना कमाल हो जाए ना. ये दुनिया ही बदल जाएगी. एनीवेज I hope he calms down soon and then again posts a message ki ab main theek hoon aisa karke kuch because yeah. Well ye to thi inki khabar. Baki market mein naya gana hai bhai bahan logo. Chalo wahi play karke batati hu. Acha hai top charts ke liye we will get to listen to more numbers. This is welcome to the jungle ka title track on Radio City 24/7 live absolutely new sirf aapke liye.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMart Online.com से आम ले लो।
6: जब घर की याद आए, GGMart Online.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMart Online.com और कॉल 8085-6577।
7: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
8: क्या है ना कि जब मुझे लगता है कि कोई चीज बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है कि मेरे को आपको बताना चाहिए, तब तक जब तक आप उसको एक बार एटलीस्ट मेरे कहने पे ट्राई नहीं कर लो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, 6:00 हो चुके हैं 19 मिनट, मैं हूं अंतरा आपके साथ, चल रहा है मिड वीक ब्लूज। बट उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे आमों के बाद भाई क्यों ना करे, जब सीजन आता है और जब आपको कोई एकदम ऑर्गेनिक आम ला के दे रहा है और आपको हम बार बार बता रहे हैं, तो why not GGMartOnline.com जाओ यार, अपने आम ऑर्डर करो एंड enjoy it, relish it, make full use of it। चलो मेरी बात नहीं मानो तो ये योगी जी हमारे हैं, इनका नाम जो है बिल्कुल इसलिए ले रही हूँ, ये वो वाले योगी जी नहीं है, बट ये योगी जी इन्होंने ट्राई किया आम एंड why he thinks everyone should order from GGMart online। योगी जी just tell us।
9: Hi, myself Yogesh. So I'm staying in Singapore for almost 6+ years. Compared to other market mangoes, GGMart mangoes are next level. Super sweet, juicy, and full of Indian real mango flavor. I think I felt like a taste of home in every bite. So I would like to recommend to all other people to use GGMart mangoes. So I ordered these mangoes online from GGMart.com, and those mangoes I ordered one day before, and next day evening I got the delivery, which is really awesome, which saved my time instead of go into market buy. So I think the delivery is quite fast, and so as I mentioned, this taste, quality and the delivery. So overall my feedback is I would like to recommend to go with the GGMart for the Indian Alfonso mango, the king of the mangoes.
8: See, this is from someone who has been ordering from GGMart online for a very good long time, and yes, he vouches for the quality of mangoes GGMart online mein milte hai. Toh bhai, Ratnagiri, Devgarh, Alfonso, whichever you want, just get them. Like really, GGMartOnline.com type करें, वहां पे जाए वेबसाइट पर जाकर जो है रजिस्टर करें, रजिस्टर करके स्क्रीनशॉट भेजे हमसे जो है, एकदम प्रोमो कोड लेकर जाए एंड डिस्काउंट भी पाए साथ साथ में, एंड देन जब आप वहां पे उस पेज पे लैंड कर ही जाओगे तो फिर जरा दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर कर ही लेना, एंड सच्ची बता रही हूँ, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सो रिमेम्बर GGMartOnline.com।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
6: Traffic update.
7: 6:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, आइए आपको बताया जाए ट्रैफिक का हाल 44 घंटे क्या कहता है। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई आफ्टर पुंगोन रोड। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर है ऑन एवाई टुवर्ड्स टुवर्स आफ्टर क्लेमेंटी एवेन्यू 2, और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन सेंट्रल एक्सप्रेस वे टुवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं एवाई आफ्टर मोलमिल रोड। सो यस, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। ढिंग चक्का चिक्का करते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एंड ऑफकोर्स वापस आपको अगली खबर देने, बस ये गाने के उस पर, जस्ट कमिंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: वेलकम बैक. 6:37 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मिडवीक ब्लूज आप सुन रहे हैं. मैं हूं अंतरा आपके साथ. और आओ जी आओ थोड़ी सी और गॉसिप की जाए. भाई इतने दिनों दिनों बाद में अगर कोई किसी चीज पे कमेंट करेगा और कहेगा कि हाँ हाँ हम भी उनके फंक्शन में गए तो थे लेकिन उन्होंने तो हमें पानी भी नहीं पूछा था. कौन बना यहाँ पे नाराज रिश्तेदार या नहीं नॉट सो नाराज रिश्तेदार दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको नाराज रिश्तेदार बनने की जरूरत है नहीं वैसे. सो बात कुछ ऐसी हुई दैट परिणीति चोपड़ा, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने शादी की राघव चड्ढा से, ठीक है. एंड देयर वेडिंग हैड दिस रियली रियली स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. आजकल यूजुअली हाई प्रोफाइल वेडिंग्स हो जाती है, ये सारी चीजें होती है, फोन वोन जब्त कर लिए जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप ना खींचो, हम आपको दिखा देंगे जो हमारी प्रोफेशनली क्लिक्ड पिक्चर्स होंगी उससे आप काम चला लेना. बट As per the recent revelation, भाई एक बंदा है वो मधु चोपड़ा जी से जो है अपना इंटरव्यू कर रहा था. एंड जब उन्होंने ऐसे ही जनरली उनसे, मधु चोपड़ा इज प्रियंका चोपड़ा की जो है मम्मी, उनकी बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आजकल ये जो पपराजी है मैम वो ना कॉन्स्टेंटली दे आर ट्राइंग टू कैप्चर ग्लिम्सेस, भाई कुछ भी दिख जाए बाहर वेन्यू के बाहर से एंड ऑल दोज थिंग्स. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जी, मतलब ये सारी चीजें तो अब आजकल नहीं होती. आप मानोगे नहीं कि जब हम गए थे परिणीति और राघव के वेडिंग पे, वहां पे मैंने जो फोटो खींची थी, आई वॉज आस्क्ड टू डिलीट द वेडिंग पिक्चर्स मेरे फोन से. सो यू सी, जब मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट हो तो फिर दूसरों के साथ तो ऑब्वियसली. सो द वेडिंग टुक प्लेस एट द लीला पैलेस उदयपुर एंड हैवी सिक्योरिटी के अंडर एंड गेस्ट वर ऑब्वियसली रिक्वेस्टेड टू अवॉइड कीपिंग फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम द सेरेमनी. एंड प्राइवेसी रूल्स इतना तक पहुंच गया कि आपने घर वालों को भी बोला था कि अगर तुमने खींच ली है तो डिलीट कर दी जाए, विच आई एम श्योर दैट मधु आंटी डिड नॉट लाइक इट दैट मच. एंड वैसे भी प्रियंका चोपड़ा तो आई ही नहीं आ पाई थी फॉर सम रीजन. कैन यू स्मेल समथिंग, लाइक कुछ तो चल रहा है, कुछ तो था माजरा, तो कुछ था. बट इट इज व्हाट इट इज, इट साउंडेड लाइक दैट. नहीं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर भाई एक नया साउंड लेकर दिस गाना हैज बीन गोइंग क्रेजी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, थोड़ा सा म्यूजिक हटके है एंड इट्स क्वाइट नाइस एंड वार्म्थ. ठीक है, तो भाई सुनते हैं. इट्स कॉल्ड मस्कारा शर्वरी एंड साथ में वेदांग रायना. दे आर कमिंग ऑन विद दिस फिल्म कॉल. मैं वापस आऊंगा. नया गाना नया साउंड, लेट्स गो फॉर इट. क्या ये बना पाएगा अपनी जगह रेणुका के टॉप चार्ट्स में? आई डोंट नो. फ्राइडे का इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए. गुड इवनिंग.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
6: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
7: All right, this one feels really personal. शाही स्टाइल पर्सनल लगता है ये मुझे अब। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मिड वीक ब्लूज। क्या होता है ना कि आप किसी से एसोसिएट

0: होते हो फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम, तो उनके सेलिब्रेशन का मोमेंट आपके खुद के सेलिब्रेशन के मोमेंट के जैसा लगता है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट शाही महारानी, अब यू नो राइट, कभी भी कुछ होता है, चाहे वो मदर्स डे हो, होली हो, चाइनीज न्यू ईयर हो, एवरी सिंगल टाइम वी हैव बीन, हमारा एसोसिएशन गोज वे लॉन्ग बैक. एंड शाही महारानी 25 साल जो है बिल्कुल कंप्लीट करने वाला है. Isn't that amazing? And they are going to celebrate 25 years of their culinary heritage at Raffles City. It is such a precious moment, and they wanted to do something special and celebrate it with all or every single person who has been there. मुझे तो ऐसे कोई बंदा ही नहीं पता है जो वहाँ पे नहीं गया हो. It the khana is that level, right? तो भाई 25 साल की इस खुशी में किस तरह से मनाया जा रहा है भाई? शाही महारानी ने बोला है कि उनके जो सिग्नेचर क्लासिक डिशेस है, जैसे कि मुर्ग टिक्का हो गया, तंदूरी चिकन हो गया, पालक पनीर हो गया, शाही सब्ज सिजलर हो गया, ऑल ऑफ दीज जो हमारे हैं वो $25 प्लस के एक सेलिब्रेटरी प्राइस पर मिलने वाले हैं. ओरिजिनली दे आर प्राइस फ्रॉम $32 एंड अबव, बट ओनली ये जो है इस सेलिब्रेशन को 25 साल को सेलिब्रेट करने के लिए $25 प्लस में मिले. ये जो ऑफर है ये सिर्फ 30th जून तक अवेलेबल है, दैट इज नंबर वन. दूसरी चीज ये याद रखे कि ये सिर्फ डाइन इन ओनली के लिए ही है, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. बट उसी के साथ साथ जो है देर हैज टू बी अ मिनिमम स्पेंड ऑफ $100 पर प्लस पर टेबल टू एंजॉय द एनिवर्सरी स्पेशल. सो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल इस बार जाए शाही महारानी, बुक कराए अपनी टेबल 6235-8840 पर. एंड यस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड तो है ही है. It is that time just to go and relish and relive those memories which we have created with Shahi Maharani. To jana to banta hi hai. Well, isi baat ke saath is royal treatment ko sochte hue, imagine karte hue, royally wrap up karte hain is ghante ko bhi. But agle ghante mein 7 baje, as you know, sabse pehle to aayenge hamare Jitesh with the IPL update, and then I will be right back on Radio Masti 24/7 live. Good evening.
1: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffles City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज
1: कर चेंज थैंक यू जितेश फॉर दैट क्विक आईपीएल का हाईलाइट एंड अपडेट. बाय द वे जैसे जितेश ने ऑलरेडी कहा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ इट देन यस फ्राइडे को रात को 8:30 द पैनलिस्ट हमारे द क्रिकेट कॉर्नर के वो आएंगे और बिल्कुल आपको बताएंगे. सो वेल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 7:00 हो चुके हैं 6 मिनट में अंतरा यहाँ पर आपके साथ मिड वीक ब्लूज चल रहा है. वैसे तो खबर में कुछ और लाई थी बट बिकॉज जितेश वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट सूर्यवंशी भाई, वो अब 15 साल का कुछ अलग ही खेल खेलने में लगा हुआ है. ही इज काइंड ऑफ इनक्रेडिबल. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग आईपीएल एंड स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट बिकॉज ऑफ धोनी एंड आई बिकेम अ सुपर डुपर बिग फैन ऑफ हिम. I think Vaibhav Suryavanshi is also kind of doing the same thing is bar mein. He is too cute also at the same time. Ek to itna seedha saadha to nahi, ek wo cheez hoti hai na ki bachcha to hai na at the end of the day. Theek hai, to match ke baad, kal jis match ki baat ho rahi thi, match ke baad jab comment jo MCs hote hain wahan pe aapse jo after the match sawal jawab karte hain and then usme dikhaya ki Vaibhav Suryavanshi pure apne full pajama pehne hue the aur jersey pehni hui thi, everything was there. jaise hi wahan se wo apna interview karke finish hua, wo apni team ke paas mein koi bhi wahan pe khada hua tha wahan pe aaye, sabse pehle to usne utare joote. Theek hai, usne joote utarne ke baad apni upar wali layer of trousers ko nikal diya, andar usne shorts pehne hue the. Tension mat lijiye warna to scandal to hone mein aajkal time hi kitna lagta hai. To well aisa kiya and chappal pehna aur chal diya aur piche aur aaram se khada ho gaya. Everybody is like bhai at the end of the day hai to bachcha hi. And for some reason because I have watched Dhurandhar the Revenge haal hi mein, bachcha hai tu mera. Yeah, the mama ji has to come in. Without the mama ji, I think he was the best character in Dhurandhar the Revenge and the first one also. He's the only one I wanted to actually look at. Yeah. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल. व्हाट अबाउट यू, कौन सा किरदार आपको पसंद आया या फिर विच आईपीएल टीम आर यू सपोर्टिंग एंड आर यू कैचिंग अप विद एवरीथिंग? नहीं तो हम है ना. फिलहाल हम आपको लेकर चलेंगे रोमांटिक गाने की तरफ. लेट्स

0: are tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
7: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
8: जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर चीजें चल रही है, वो दिन दूर नहीं है कि आप और मैं, हम में से कई सारे ऐसे लोग हो गए जो ये सोचेंगे कि अब तो मुझे भी डिटॉक्स की जरूरत है, थोड़े दिन के लिए हम भी ये इंस्टा और फेसबुक से सबैटिकल लेना चाहते हैं। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव ड्रॉप के साथ 7:00 हो चुके हैं 19 मिनट यहाँ पर। और यहाँ जो है, मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही थी कि रिया चक्रवर्ती जो है, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, SSR case, you have heard her name. उसके बाद अभी हाल में ये सारे के सारे charges जो है बाहर आ चुके हैं, and then she started looking for work and everything, and she has her own clothing brand now. ये सारी बातें एक तरफ, और उनका सडन ये जो है इंस्टाग्राम स्टोरी एक तरफ, दैट लेटली आई हैव बीन मिसिंग माई सेल्फ अ लिटिल, द कॉन्स्टेंट नॉइज, द स्क्रॉलिंग एंड कीपिंग अप, इट्स ऑल स्टार्टेड टू फील अ लिटिल हेवियर देन आई एक्सपेक्टेड। आई मिस बीइंग प्रेजेंट विदाउट थिंकिंग अबाउट कैप्चरिंग द मोमेंट। आई मिस क्वाइट, आई मिस सिंपली बीइंग, सो I am taking a step back for a while, so to slow down, breathe a little deeper and reconnect with what feels real. Choosing lived moments over posted ones for now. See you soon. And she's not the first one. मैंने कई सारे अभी हाल फिलहाल में जो है कुछ stars and celebs को देखा हुआ है इस sabbatical लेने के लिए कि भाई too much हो रहा है, नहीं संभाला जा रहा है जो social media पे चल रहा है। And come to think about it, it's actually way too much to absorb for our minds. Already kitni sari cheeze hai hamare sochne ke liye, and this doom scrolling is actually sahi naam diya hua hai, dooms day hi lekar aayega ye doom scrolling. It's such a black hole. I mean, never have I ever kabhi bahut der tak doom scrolling karke utho na to aap aise lost se lagte ho ki main kahan hoon. Why to push yourself to that man? And also the amount of hatred and these kind of comments and the khullapan mil gaya hai sabko, koi kuch bhi bol raha hai, that has grown so much, and it grows on you if you are kind of an empathetic person or you're a sensitive person or you are a person who feels things generally kafi sara. Anyways, मैं तो ऐसे साउंड कर रही हूँ कि मैंने भी बंदी कर देना है। हाँ, ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाया और भी कुछ, जिससे जितना है उतने में मैं खुश हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती है ना। Radio Masti 24, I already sound like an old person for some reason. भाई चलते हैं, गाने वाने सुनते हैं और वापस आते हैं Radio Masti 24/7 Live.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: कई बार ना हमें अपनी ही शक्तियों का अंदाजा नहीं होता है. नहीं, मैं ऋतिक रोशन तो नहीं हूँ, बट डेफिनेटली एक जादू है जो हम सभी के अंदर है, और उस जादू से काम करवाना कैसा है अब वही बताना है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ अंतराब के साथ यहाँ पर, और चल रहा है मिडवीक ब्लूज. भाई बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एक बहुत ही बड़े सेटअप में जाते हो, आप स्टेज पे जाते हो, आपको कोई स्पीच देनी होती है, या फिर आप फर्स्ट टाइम एज इनफैक्ट यहाँ पर जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो हमारी तो आदतें हैं बात करने की. जब कोई नया आता है और वो हमारे लिए गेस्ट है, ठीक है, सामने बैठे हुए हैं, और वो जब माइक पे आता है तो वो भी काफी नर्वस होते हैं कि भाई आपने तो ये काम कर रखा है लेकिन हमें तो पता नहीं है. एंड व्हेन यू थिंक लाइक दैट, इट अफेक्ट्स लाइक दैट. देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कि हमें सिखाया गया है, हमने ओवर द इयर्स ये एक्सपीरियंस गेन करके भी सीखा हुआ है. अब क्या है कि अब कम्युनिटी में ऐसा ही होता है कि जब आपने कोई एक स्किल हासिल कर ली है और अचीव कर लिया है तो हम चाहते हैं कि वो हम आपके साथ भी बांटें. एंड यस, देयर कम्स आरजे एकेडमी. सो इफ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, राइट, हम यहाँ पे आते हैं, माइक से कितने सारे लोगों के दिल में उतर जाते हैं अपने बातों के जरिए, अपनी पर्सनालिटीज के जरिए, या फिर आपको लगता है दैट यू हैव अ स्टेज फियर काइंड ऑफ अ थिंग एंड यू वांट टू डेवलप दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप बस सामने जाएं एंड देन यू काइंड ऑफ प्रेजेंट योरसेल्फ विद लाइक लग जाए, आपके जाने के बाद लगे कि यार ये बढ़िया था, आपकी आवाज नहीं कांपे, है ना. तो ये सारी की सारी चीजें आरजे एकेडमी में आपको बिल्कुल सिखाई जाएंगी. दिस एंड मच मच मोर. ओके, इट्स जस्ट नॉट वन थिंग. रेडियो इज And was never about just one thing. ये तो हमको सिर्फ लगता है कि बस एक ही तो चीज करती होगी, जाके बात ही तो करनी है. नो, जाके बात नहीं करनी है. इट इज मच बिगर देन दैट. सो वेल, वी आर टेलिंग यू कि भाई एडमिशंस ओपन हो चुके हैं. एक हाइब्रिड मॉडल जो है क्रिएट किया गया है. You will have to complete this 12 hours, जो कि हर लेवल में स्प्रेड अक्रॉस किया हुआ है. ऑनलाइन क्लासेस प्लस इन स्टूडियो एक्सपीरियंस, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, सो दैट यू कैन यू नो हैंडल एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज दुनिया ही अभी हाइब्रिड मोड पे चल रही है बॉस. सो वेल, 14 years and above age का जो है वो limit है, तो आप बिल्कुल उस हिसाब से, आपको अगर इन सब के बीच में पड़ गए हैं तो फिर आ जाइए, आके आपको अपनी दुनिया से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू ईमेल अ ब्रीफ इंट्रो अपना info@radiomasti.com.sg पर, एंड रिक्वेस्ट करिए द एप्लीकेशन फॉर्म टू आरजे एकेडमी. सो दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू. तो अब तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अगर जहाँ पे मैं बैठी हूँ, अगर आपने सोचा है कि एक दिन मेरा भी शो होगा, एक दिन मैं भी इस गद्दी पे यानी कि हॉट सीट पे बैठूंगी, देन यू कैन गेट दैट चांस एज वेल. अब आया ना इंटरेस्ट. Let's go, भेजो भेजो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए, भेज दो.

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया। जोश में रहो।
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पहले चलो।
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
3: रात अकेले है। जोश में रहो।
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा।
5: हाँ जी जी।
4: 1/2 केजी मसूर दाल।
5: जी जी।
4: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
4: क्या जी?
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com। ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी, क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
4: सडनली बड़ी सारी कहानियां बाहर आ रही हैं सरोज खान यानी कि मास्टर साहब की कहानियां जो है कई सारी बाहर आई हैं। दो चुन के बताती हूँ क्योंकि फ्लेवर भी तो आपको देना है क्योंकि कल है थर्सडे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज। भाई तब्बू जो है उन्होंने शेयर किया दैट जब तब्बू ने सरोज खान साहब जो है जी के साथ कब काम किया था। रंग दे मूवी जो है वो हमारी सरोज खान जी ने तब्बू के लिए कोरियोग्राफ किया था एंड आफ्टर शी डिड दैट रंगदे वाला गाना तब्बू गिफ्टेड गोल्ड के बैंगल्स टू सरोज खान जी एंड 1000 रुपीस ईच टू ऑल द डांसर्स। सो दैट्स हाउ शी रिमेंबर्स हर। और वहीं पे एक और कहानी सामने आई। अपेरेंटली सरोज जी जो है सिखा रही थी जो डांस है वो करिश्मा कपूर को एंड करिश्मा कपूर गॉट अनॉयड बिकॉज जो डांसर्स है कोई तो कुछ ऐसा हो गया कि आई नहीं और लेट हो गया। सो शी गॉट रियली एंग्री एंड शी जस्ट वॉक्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर गाना एंड कोरियोग्राफी। उसके बाद से कभी भी करिश्मा एंड सरोज जी ने साथ में काम नहीं किया। या सो ये सारी बातें जो है कभी बहुत बहुत टाइम के बाद ये जो चीजें हैं अब बाहर आ रही हैं। कभी हम ऐसे शो पे बता देते हैं, कभी आपको मस्ती 90s मिक्स टेप के शो के बहाने बता देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे मौका ही चाहिए कि बात करने के लिए, बस अब बात ऐसी आ गई है तो बता देती हूँ कि कल थर्सडे है, कल मेरा एक शो आता है 11 बजे विच इज कॉल्ड मस्ती 90s मिक्स टेप, तो आप भी आ जाना। एंड या बहुत बहुत ही मजेदार, मतलब यादों का पिटारा, इट इज जस्ट टू गुड, है ना? तो ये याद रखना। बाकी अभी नहीं, मैं जा नहीं रही हूं अभी तो, और बस थोड़ी देर और याद रहेगा ना। ओके, सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
7: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले

0: गाना बजा दूं।
1: ना ना ना, आरजू वाली बेबी अब कोई गाना नहीं चलाएगी, बस लास्ट वाला गाना चलाकर यहाँ से बाय बाय बोलते हुए निकल जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कल सुबह वापस आना है, बट नॉट अर्ली मॉर्निंग, दैट इज फॉर श्योर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ थी, जी हाँ 5 बजे से आपके साथ थी, अब यहाँ पे 8 बजने हमारे हैं। आई होप यू एंजॉयड द शो। हमारे जो ब्लूज है वो पहले से ही हटे हुए हैं यार, लाइक सीरियसली इवारा। और मैंने तो आज आते ही कहा था कि कभी कभी मंडे को भी एकदम ऐसी एकदम छुट्टी वाली फील होनी चाहिए, फिर मुझे अचानक से इन द मिडल ऑफ द शो याद आया कि ये वाली फीलिंग तो आप वैसे भी अगले हफ्ते लेने वाले हो। नहीं, सब याद है मुझे, सब पता है मुझे। बट वेल, आप जिसके पास नहीं है उसको क्या ही करना, बट एक बार बॉस के पास अर्जी डाल के देखते हो कि मतलब है ना, बनता है ना। हाँ, तो मैं आपकी सहमति लेते हुए, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपने मुझे सहमति दे दी है, वो लेते हुए मैं यहाँ से जाती हूँ और मिलेंगे कल, ठीक है। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड एंड लीविंग यू विद अ ब्यूटीफुल लकी अली नंबर, यू विल लव इट, डोंट ट्यून आउट, यू विल लव द सॉन्ग, आई नो इट, आई नो यू, जस्ट स्टे, बाय बाय, गुड नाइट।

0: देखो देखो वहाँ पे
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: ए भिड़ो, पता है ट्यूनिंग क्या होती है? ट्यूनिंग हाँ, यू गाइस डिड राइट, जो भी तुम लोग ने कर रखा है, बोले तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की ट्यूनिंग की हुई है ना, उधर ही से तो अपन बोल रहे हैं, नाम में क्या रखा है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा अंदाज ही मेरी पहचान है, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर आ गया हूँ यादों का कारवां। अब आप सिंगापुर सोच रहे होंगे कि मैंने आते क्यों पूछा कि ट्यूनिंग पता है क्या होती है। अच्छा चलिए, बॉन्डिंग तो आपको पता ही होगी, क्यों हा? अब आप पूछेंगे कि मैं आज इतने सारे सवाल क्यों कर रहा हूँ आपसे। वेल, सिंगापुर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी के साथ मिलकर जब कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपकी कोशिश रहती है कि आगे जब भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट हो तो आपको उसी का साथ मिले जिसके साथ आप पहले धमाल मचा चुके हैं। सही कह रहा हूँ ना? और ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है और हम इसी को तो कहते हैं ट्यूनिंग या बॉन्डिंग। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही देख लीजिए, यहाँ सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस की नहीं, एक्टर्स डायरेक्टर्स, एक्टर्स प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट और यहाँ तक कभी कभी स्पॉट बॉयज तक की ट्यूनिंग या बॉन्डिंग बन जाती है। सही में, यकीन मानिए। खैर, अभी हम कुछ हाई लेवल की बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये तो बता दूं आपको कि यादों का कारवां आज कौन से बरस से होकर गुजरेगा। वेल, सिंगापुर आज हम निकलेंगे 1978 के बेहद म्यूजिकल और बेहद सक्सेसफुल ईयर से। शुरू में हम बात कर लेते हैं बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साहब की। उनके साथ भी कईयों की जोड़ियां बनी। बच्चन साहब सबसे ज्यादा चर्चा में रहे एक्ट्रेस रेखा जी की जोड़ी के साथ। इसके अलावा एक्टर विनोद खन्ना और प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के साथ भी उनकी जबरदस्त ट्यूनिंग रही। इन तीनों ने 4 फिल्में की और शायद ही कोई फिल्म हो जो न चली हो। इन सभी की जुगलबंदी ने मानो समय तहलका मचाया हुआ था और इसी तहलके के तहत 1978 में एक फिल्म आई थी, नाम था उसका मुकद्दर का सिकंदर। उसमें भी ये सब साथ दिखे। सिंगापुर ये वो वक्त था जब अमित जी और रेखा जी के पर्दे के पीछे की प्रेम कहानियां वायरल हो गई थी। हालांकि ये वर्ड वायरल उस वक्त बुखार के लिए यूज होता था, बट मुकद्दर का सिकंदर में प्रकाश मेहरा साहब ने रेखा को लिया तो सही, लेकिन अमित जी के ऑपोजिट रेखा को नहीं बल्कि उनके नाम से मिलती जुलती राखी को कास्ट किया। मैं तो ये कहूंगा कि ये देवदास से इंस्पायर्ड कहानी थी। मतलब देवदास को जब अपनी पारो नहीं मिलती तो वो चंद्रमुखी के पास चले जाते हैं और इसमें चंद्रमुखी थी रेखा, पारो थी राखी। फिल्म कमाल थी, इसका म्यूजिक धमाल मचा रहा था और कमाई के मामले में ये मूवी 1978 में पूरे साल का राजा बनकर उभरी, सबसे आगे सबसे ऊपर। और अगर पूरे डेकेड की बात करें तो ये शोले और बॉबी के बाद तीसरे नंबर पर कमाई के मामले में रही। शायद आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन इस फिल्म का टिकट पाना जैसे कोई जंग जीतने जैसा हो गया था। नौबत यहां तक आ गई थी कि टिकट लेने के लिए लोग सिनेमा हॉल के बाहर रात भर कतारों में लगने पर मजबूर हो गए थे। अब सोचिए कितनी दीवानगी थी इस फिल्म के लिए। बहरहाल सॉन्ग्स भी कमाल मचा रहे थे, धमाल मचा रहे थे, म्यूजिक इसका कमाल था। किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, लता दीदी, आशा दीदी, सभी के सभी जो उस वक्त हिट थे, सबकी आवाजों में गाने थे इस फिल्म में। तो चलिए सुन लेते हैं अनजान के बोल और कल्याण जी आनंद जी का मैजिकल म्यूजिक। इन गानों के साथ शुरू करते हैं आज का यादों का कारवां। बने रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। सिंगापुर, यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
6: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: मेरा इंतजार तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन समर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों, क्या याद आ गया आपको? वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत कर लेता हूँ। आप है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। ये है यादों का कारवां जो आज गुजर रहा है 1978 के ईयर से। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपसे पूछ लेता हूँ कि समर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो आपको कौन सी फिल्म याद आती है? You guys it right? Yes, it is Dawn.
7: पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है।
8: करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: नहीं मन नहीं भरा, तो चलिए एक बार और सुन लीजिए।
8: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: आप भी क्या याद रखेंगे। तो जनाब मुकद्दर का सिकंदर के बाद अब बारी आ रही है बॉलीवुड के शहंशाह द लिविंग लेजेंड बिग बी अमिताभ बच्चन साहब की। सिंगापुर जिस 1978 के दौर की हम बात कर रहे हैं, तब बिग बी का करियर परवान पर था। वो जिस भी फिल्म को छू देते थे, जिस पर भी हाथ रखते थे, वो सोना उगल रही थी। फैंस और फॉलोअर्स का आंकड़ा तो पूछे ही मत, काउंटलेस लाखों करोड़ों फैंस बन चुके थे बिग बी के। इस बीच एक फिल्म आई डॉन, जिसका अभी मैंने आपको डायलॉग सुनाया। क्या नहीं था इस फिल्म में, कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज, फुल ऑन मसाला फिल्म, हर चीज बेहतरीन। इस क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी में अमिताभ बच्चन साहब डबल रोल में थे। मोस्ट वांटेड डॉन का किरदार भी उन्हीं का था और विजय का कैरेक्टर भी उन्होंने ही निभाया था। तो सिंगापुर पर्दे पर जो आपको कहानी दिखती है वो जितनी बेहतरीन है ना, उससे भी ज्यादा दिलचस्प पर्दे के पीछे की कहानी है। वाकई में, दरअसल ये कम ही लोग जानते हैं कि डॉन फिल्म ने शक्ल कैसे ली, माने कि इसका आइडिया कहाँ से आया। चलिए मैं बताता हूँ, हुआ कुछ यूं कि जो डॉन फिल्म के प्रोड्यूसर साहब थे नरीमन ईरानी साहब, वो सुनील दत्त के साथ एक फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद जबरदस्त फाइनेंशियल लॉसेस में चल रहे थे। लोन का लाखों रुपया चुक नहीं रहा था उनसे, जिन्हें उन्होंने सैलरी नहीं दी थी वो रोजाना उनके चक्कर लगा रहे थे। पर जब वो रोटी कपड़ा और मकान बना रहे थे, तब उनकी स्टार कास्ट बच्चन साहब, जीनत अमान और प्राण ने इससे उबरने के लिए सोचा कि क्यों ना उनकी मदद की जाए। इस पर सभी ने तय किया और उन्होंने एक प्लान बनाया और ये फिल्म डॉन सामने आई। कंपटीशन पहले भी होता था इंडस्ट्री में, लेकिन जब कोई प्रोड्यूसर लॉस में जाता था तो कैसे सब लोग उसे बचाने के लिए, उसकी नैया को पार लगाने के लिए साथ देते थे, साथ आ जाते थे। यह किस्सा यही बयां कर रहा है। वेल, चलिए अभी आप मेरे साथ रहेगा क्योंकि अभी तो भैया शो शुरू हुआ है सिंगापुर, मजा तो बाकी है। अगली फिल्म फिर अमिताभ बच्चन साहब की होने वाली है, क्योंकि दौर अमिताभ बच्चन साहब का था। वो कौन सी है ये जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ यादों का कारवां।

वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवा लिए चला आया हूँ। और आज हमारा कारवा गुजर रहा है 1978 के साल से। मुझे मालूम है कि बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं इसी साल पैदा हुए थे, लेकिन लेकिन लेकिन कुछ लोग इतने बड़े भी हो चुके थे कि वो उस दौरान फिल्में देखने लग गए थे और अमिताभ बच्चन साहब के फैन बन चुके थे। तो चलिए फिलहाल हम यादों का कारवा में अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। अगली फिल्म का नाम लेने से पहले मैं आपको बताऊं, कामयाब होना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी फील्ड में, ये तो हम सभी जानते हैं, पर कामयाबी को सस्टेन करना उससे भी बड़ा मुश्किल होता है। और जिसने ये काम कर लिया समझ लीजिए उसकी तो नैया पार हो गई। अब अमिताभ बच्चन साहब और शशि कपूर का एग्जांपल ले लेते हैं। शुरुआती फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग का जलवा दिखाकर दोनों ने इंडस्ट्री में पहचान तो बना ली थी, पर उसे सस्टेन करने के लिए दोनों एक्टर्स ने क्या नहीं किया। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि दोनों एक्टर्स इतने बिजी हो गए थे कि एक बार में ही 5-6 फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। इधर एक फिल्म की शूटिंग पूरी हुई नहीं कि उधर दूसरी के लिए भागे। अब सोचिए दो को संभालना इतना भारी है, तो एक साथ अगर 5 फिल्में फ्लोर पर होंगी, एक ही दिन में आप 2 घंटे 4 घंटा एक एक फिल्म को दे रहे होंगे, तो कैसे करते होंगे ये सब, कितनी मेहनत करते होंगे, और देखिए उसका अंजाम हम सभी के सामने। खैर चलिए छोड़िए इन बातों को, आप तो ये बताइए कि बच्चन साहब और शशि कपूर की जोड़ी आपको कैसी लगती है। अच्छी लगती है। इस सुपरहिट जोड़ी ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और लोगों ने इन्हें खूब पसंद भी किया। और आपको मालूम है ओरिजिनली शशि कपूर साहब बच्चन साहब से उम्र में करीब 4 साल बड़े थे, लेकिन पर्दे पर ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने बच्चन जी के छोटे भाई का किरदार ही निभाया है ना, इस जोड़ी की रोचक बात। बहरहाल इस सुपर डुपर जोड़ी की 1978 में एक मूवी आई, नाम था उसका त्रिशूल। जी यही है वो फिल्म जिसका मैं जिक्र करने वाला था, त्रिशूल। इसमें भी दोनों भाइयों की भूमिका में वेल सिंगापुर यश चोपड़ा साहब की इस फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा भी है। दरअसल पूनम ढिल्लो इसमें डेब्यू कर रही थी और उसमें एक शॉट था जिसमें शशि कपूर साहब को पूनम को तमाचा जड़ना था। अब शशि कपूर साहब ने सीन को रियल और लाइव फील देने के लिए पूनम के हकीकत में तमाचा जड़ दिया। सच्ची में फिर तो पूछे ही मत, नई नवेली एक्ट्रेस पूनम तो अपने से सुपर सीनियर शशि कपूर से तमाचा खाने के बाद पूरे दिन सहमी रही, ये क्या हुआ, फिर से कौन सी गलती हो गई थी। लेकिन बाद में शशि जी ने अपोलोजाइज किया, लेकिन ये हुआ पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे तो ये शॉट परफेक्टली ओके हो गया था। खैर सिंगापुर मल्टी स्टारर इस मूवी में अमित जी, शशि जी और पूनम ढिल्लन के अलावा संजीव कुमार, राखी, हेमा मालिनी, सचिन, वहीदा रहमान और प्रेम चोपड़ा जैसे मजे हुए एक्टर्स भी रहे। और म्यूजिक बेहतरीन, कमाल, लाजवाब। कुल 7 गाने, लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी जिन्हें संगीत से सजाया खयाम साहब ने। इनमें से मोहब्बत बड़े काम की चीज है, गापू जी गम गम, इन गानों के तो भैया कहने ही क्या। तो चलिए बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही इस मूवी के लाजवाब गाने सुनकर हम भी इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

आइए, आप ही का इंतजार था मुझे। मैं हूँ समर, रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव पर एक बार फिर से दोनों बाहें फैलाकर कर रहा हूँ आपका इस्तकबाल। ये है यादों का कारवां और आज हमारा कारवां गुजर रहा है सिंगापुर 1978 के बेहतरीन साल से। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1978 साल था अमिताभ बच्चन साहब का। अमिताभ बच्चन साहब का जलवा परवान पर था। वो जिस भी मूवी में काम कर रहे थे उस मूवी के प्रोड्यूसर्स के वारे न्यारे हो रहे थे। बच्चन साहब के नाम से ही फिल्में चलने लगी थी, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई थी उनकी। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप भी उस दौर में उनके फैन बन गए थे या बाद में बने, बताइएगा हमें हमारे फेसबुक पेज पर आकर। वो मैग्नेट होता है ना मैग्नेट, ठीक वैसे ही कुछ था उनका जलवा अमिताभ बच्चन साहब का। इस मैग्नेट की वजह से ही लोग थिएटर्स तक खींचे चले आते थे। मुकद्दर का सिकंदर हो, डॉन हो, त्रिशूल हो, उस साल वो टॉप पर चल रहे थे, या यूं कह सकते हैं कि उनकी वजह से बॉक्स ऑफिस के भी अच्छे दिन आए हुए थे। लेकिन सिंगापुर बीच बीच में कुछ एक ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने बिना बच्चन साहब के भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। उनमें से एक फिल्म थी हीरा लाल पन्ना लाल। जी, हीरा लाल माने शशि कपूर और पन्ना लाल माने रणधीर कपूर साहब। वाकई बहुत लाजवाब मूवी है। चाचा भतीजा इस फिल्म में थे। मैं तो कहता हूँ अभी तक नहीं देखी तो मस्ट वॉच मूवी, आप देखिएगा। एक्शन प्लस कॉमेडी का जबरदस्त मिक्स है इसमें। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं। यही इसकी यूएसपी है जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया। फटाफट अंदाज में स्टोरी चलती है। कहानी कुछ ऐसी होती है कि ये जोड़ी जो होती है पुलिस की मददगार होती है। दिखने में भले ही हीरा लाल और पन्ना लाल का करेक्टर थोड़ा बेवकूफाना सा लगता है, यानी फुलिश सा है, लेकिन ये जोड़ी एक के बाद एक खतरनाक क्रिमिनल्स को कैसे झील तक पहुंचा देती है, यही है इस मूवी की कहानी। और वैसे कॉमेडी एक्शन से भरपूर फिल्म के बीच बीच में रोमांटिक तड़का भी मारा है डायरेक्टर अशोक रॉय साहब ने। हीरा लाल शशि कपूर साहब के सामने जीनत अमान जी हैं, तो वहीं पन्ना लाल रणधीर कपूर के सामने नीतू सिंह है। अब देखिए कमाल की बात, हीरा लाल पन्ना लाल चाचा भतीजे और पन्ना लाल की हीरोइन रियल लाइफ में उनके छोटे भाई की हीरोइन मतलब नीतू सिंह। वैसे उन दिनों नेगेटिव किरदारों को भी लोग खूब पसंद करते थे, जैसे हीरा लाल पन्ना लाल में कालीचरण के रोल में अजीत साहब या पैंथर के रोल में अमजद खान, और हाँ जग्गू बने रणजीत भी थे इस फिल्म में। इन सभी विलेंस के काम को खूब तारीफ मिली। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ सिंगापुर, मैंने तो ये फिल्म देख ली है, आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। और फिलहाल म्यूजिक डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, गानों की बात कर लेते हैं। तो देखिए इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं और म्यूजिक आरडी बर्मन साहब का है। साथ ही लेजेंड्स किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले साहब की आवाजें मिल गईं, तो भैया कमाल ही हो गया। और जब गानों के बोल लिख दिए मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और इंदिवर साहब ने, तो फिर तो भैया कहने ही क्या। तो चलिए अभी इनमें से चुनकर मैं अपनी पसंद के कुछ गाने आपको सुनवा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे और इसके बाद ये फिल्म देखेंगे तो आपको सब गाने पसंद आ जाएंगे। फिलहाल ये गाने आपके लिए आ रहे हैं यादों का कारवां में। ये है रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो। नाउ ऑन द गो, मैं हूं समर, लौटता हूं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

वेलकम बैक, मैं लौट आया। क्या ब्रेक था। देखिए, आज 1978 की बात हो रही है, सिंगापुर 1978 की। मैं समर हूँ और आप सुन रहे हैं यादों का कारवां रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। 1978 के दौरान एक मासूम सी दिखने वाली, भोली भाली सी दिखने वाली, लगने वाली टीनेज गर्ल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री ली। उस लड़की के जितने अच्छे चेहरे के फीचर्स थे, वो जितनी खूबसूरत लगती थी उतनी ही बेहतरीन उनकी एक्टिंग भी थी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा गैस कीजिए, अंदाजा लगाइए। आप तो उस दौर में पैदा हो गए थे, फिल्में भी देखने लग गए थे। 16 साल की उम्र वाली इस लड़की पर सबसे पहले नजर पड़ी उस वक्त के जाने माने एक्टर देव साहब की। जानते हैं उस लड़की का नाम क्या था, जो आगे चलकर शानदार एक्ट्रेस बनी। और अब फिलहाल ये खूबसूरत एक्ट्रेस इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली की बहू है। भाई जाने में किसकी बात कर रहा हूँ, चलिए चलिए दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए। सिंपल सा आंसर है, यू गेस इट राइट। आप पहचान गई, मुझे मालूम था आप सबसे पहले पहचानेंगी। श्वेता जी ने पहचाना, तो चलिए मैं बता देता हूँ, इनका नाम है टीना मुनीम। जी हाँ, सिंगापुर गुजराती जैन फैमिली से बिलोंग करने वाली टीना फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग किया करती थी। और जब उनकी मॉडलिंग परवान पर थी और वो एक के बाद एक खिताब जीत रही थी, तब देव साहब की नजरें उन पर इनायत हो गईं। बस फिर क्या था, देव साहब ने टीना को अप्रोच किया और अपनी फिल्म देश परदेश में कास्ट कर लिया। और वो कहते ना कि डेब्यू मैच में छक्के मारते हुए टीना ने ये मैच जीत लिया। खैर, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं एक फिल्म की, इसमें देव साहब ने मल्टी कैरेक्टर्स प्ले किए थे। एक्टर के अलावा इसमें वो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। ये इलीगल माइग्रेशन के टॉपिक को लेकर बनाई गई फिल्म थी। दरअसल वो उस वक्त का हॉट इश्यू भी था। कई नौजवान शख्स विदेश जाने की चाह में इलीगल एजेंट्स के झांसे में फंसकर अपनी कमाई कमा रहे थे। बस इसी इश्यू को लेकर ये फिल्म बनी थी। बताते हैं कि देव साहब को ये इश्यू तब क्लिक किया जब वो प्लेन में सफर के दौरान एक स्टोरी बुक पढ़ रहे थे। टॉपिक कुछ ऐसा था कि फिल्म के ज्यादातर शॉट्स विदेश में फिल्माए जाते तो ही काम बनता, पर देव साहब ने अपना दिमाग दौड़ाया और लंदन के एक जाने माने बार की शक्ल में यहाँ इंडिया में एक बार बनवा डाला। और हाँ, एक और बात, देश परदेश जो फिल्म है ना, वो उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिसमें एक्टर के ऑपोजिट कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है। पर हाँ, इसका जो बेस्ट पार्ट है ना, वो देव साहब के अलावा प्राण, अजीत, टॉम ऑल्टर, श्रीराम लागू, ए के हंगल और बिंदु जैसे बेहतरीन एक्टर्स की मंझी हुई एक्टिंग भी है। वेल, जहां तक म्यूजिक का सवाल है, तो फिल्म में म्यूजिक दिया है राजेश रोशन साहब ने। करीब करीब 7 गानों में 3-4 तो ऐसे हैं जिन्हें लाजवाब की कैटेगरी में रखा जा सकता है। हाँ, याद है आपको किशोर कुमार की आवाज में, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, या वो आप कहें और हम ना आए, और एक वो भी तो है, तू पी और तू जी, आहा, क्या बात है। वेल, चलिए बातों को देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक और म्यूजिकल ब्रेक को देते हैं अपने बीच में जगह। इसके बाद हम तो देसी लोग हैं, परदेश में जरूर मिल रहे हैं। फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, देश परदेश के इन गानों के बाद। आप सुनते रहिए यादों का कारवां रेडियो 24/7 लाइव, और मैं हूं समर आपके साथ।

या सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवा के जरिए आपसे मुखातिब हूं। और आज हमारा कारवा गुजर रहा है 1978 के साल से, 1978 का साल, कमाल का साल। अच्छा देखिए, मैं इतनी सारी फिल्मी बातें करता हूँ, बॉलीवुड का इतना ज्ञान देता हूँ आप लोगों को, तो अब मैं आपके बॉलीवुड नॉलेज का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक मूवी का प्लॉट बताता हूँ, आपको बताना है कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आप बता देंगे एक झटके में, मुझसे ज्यादा जानकारी है आपको। हाँ तो चलिए मैं बता दूं, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की को दिखाते हुए जो अपने चाचा के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। वो लड़की ज्यादातर शिव भक्ति में लीन रहती है और उसको सिंगिंग डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट है। पर एक दिन उसके साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेल गिर जाता है जिसकी वजह से उसके चेहरे का एक तरफ का गाल झुलस जाता है। खूबसूरत सी दिखने वाली वो लड़की किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, वो हमेशा अपने एक तरफ के चेहरे को छिपाए रहती है, पर उसकी आवाज की खूबसूरती पहले की तरह बरकरार रहती है। एक दिन उसकी इसी सुरीली आवाज का दीवाना बन बैठता है एक नौजवान हैंडसम लुकिंग इंजीनियर। वो शख्स बिना उसका चेहरा देखे उससे शादी कर बैठता है और फिर शुरू होते हैं उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव। पहचाना आपने, पूरी कहानी सुना दी अब तो मैंने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उन लोगों के लिए जो गुजरे जमाने की फिल्मों के दीवाने रहे होंगे, उन्होंने तो इसका जवाब पहले हिंट में ही दे दिया होगा। द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राज कपूर साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। ये फिल्म कई वजहों से चर्चा में रही और दर्शकों को सिनेमा थिएटर्स तक खींच कर लाई। फिल्म की स्टोरी उन्हीं जैनेन्द्र जैन साहब ने लिखी जो इससे पहले बॉबी खान दोस्त और काली चरण लिखकर उन्हें हिट भी करवा चुके थे। ये स्टोरी भी बिल्कुल हटकर थी, एक्ट्रेस का किरदार थोड़ा बोल्ड था, लिहाजा इस रोल को कोई शिद्दत से निभा सके तो उसके लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले हेमा मालिनी को और फिर डिंपल कपाड़िया को अप्रोच किया गया इस रोल के लिए, पर दोनों ने ही ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद बारी आई जीनत अमान की, वो राजी हो गई। शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने पर्दे पर जैसे धमाल मचा डाला और बेस्ट पार्ट रहा म्यूजिक और गाने, एक से बढ़कर एक लाजवाब गाने। फिल्म के गाने लिखे एक नहीं बल्कि तीन तीन लोगों ने, जी हाँ, आनंद बख्शी साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा और विठल भाई पटेल ने इस फिल्म के लिए गाने लिखे, लेकिन इनको म्यूजिक से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जादुई सुरीली जोड़ी ने। बाकी इन्हें सुपरहिट करवाने का काम किया लता जी ने, मुकेश जी ने, मन्ना डे जी ने और नितिन मुकेश जी ने। सिंगापुर में सच बोल रहा हूँ, अगर आप ये एल्बम सुनेंगे ना तो आप एक भी गाना स्किप नहीं कर पाएंगे, कमाल के गाने इस फिल्म में। तब कंप्यूटर जी, आप भी मुझे लगता नहीं है कि एक आध गाना सुनाकर संतोष कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एल्बम तो नहीं चला सकते, लेकिन कम से कम दो गाने तो सुनाए जाए, क्या कहते हैं आप? अब देखिए, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, अगर ये गाना जो है ना, इसका टाइटल ट्रैक इस फिल्म का, अगर आप इसे सुबह सुबह सुन लेना तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या रूहानी सी ताकत मिल गई आपको, एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है आपके चारों तरफ। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप भी इसे सुनेंगे किसी दिन सुबह सुबह तो आप भी ऐसे कुछ महसूस करेंगे। हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, अभी भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आंखों को बंद करना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा इस गाने को। दूसरा गाना यशोमती मैया से, बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये वो गाना है जो जन्माष्टमी पर आज भी यहाँ भी बजता है और दुनिया के हर कोने में जहाँ पर भी कृष्ण भक्त रहते हैं, हिंदी के रेडियो स्टेशन है, वहां पर ये गाना उन स्टेशन से जरूर प्ले होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुनवा दी जाए गाने, कंप्यूटर जी क्या कहते हैं आप? आप इन्हें एंजॉय कीजिए और लौट कर आइए, अभी तो कई फिल्मों का जिक्र बाकी है मेरे दोस्त। यह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ समर, लौटूंगा यहीं पर इन गानों के बाद।

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मंजी 24/7 लाइव पर 1978 से गुजर रहा है आज हमारा यादों का कारवां। मैं हूं समर और एक और बेहतरीन फिल्म का जिक्र लेकर आ गया हूं जो इसी साल रिलीज हुई थी। मेरे ख्याल से सत्यम शिवम सुंदरम के गाने सुनने के बाद आप बहुत सुकून महसूस कर रहे होंगे। तो देखिए हमारा काम भी यही, आपको एंटरटेन करना, आपको सुकून देना। वैसे 70s के दौर में एक्ट्रेस जीनत अमान ने कई तरह की फिल्में की, कई तरह के किरदार निभाए। रोमांटिक, चुलबुली, बिंदास, बोल्ड, हर तरह के किरदार को उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपने अंदर के एक्टर को चैलेंज किया और वो अपनी बहुत मेहनत और बेहतरीन अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुकी थी। सिंगापुर सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज हुई थी मार्च 1978 में। इसमें जीनत अमान के धमाकेदार और बोल्ड अंदाज ने कईयों को दीवाना बना दिया था उनका। इसके बाद साल के जाते जाते दिसंबर में एक फिल्म आई 1978 के दिसंबर में और उस फिल्म का नाम था शालीमार। इसमें उनके ऑपोजिट रहे बॉलीवुड के एक्शन किंग और ही मैन, उस वक्त वही थे एक्शन किंग, धर्म बाजी, धर्मेंद्र, साथ में शम्मी कपूर, प्रेम नाथ और अरुणा ईरानी ने भी अपनी लाजवाब एक्टिंग का तड़का लगाया। पर इन सब में सबसे खास या कहें कि यूएसपी जो इस फिल्म की थी वो थी इसमें शामिल फॉरेन एक्टर्स की स्टार कास्ट। जी हाँ, फिल्म में इंग्लिश एक्टर सर रेक्स हैरिसन भी थे तो अमेरिकन एक्टर जॉन सैक्सन और सिल्विया माइल्स भी थी और ये तीनों ही विदेशी फिल्मों के जाने माने एक्टर्स थे। इन सभी ने बस इसी बॉलीवुड मूवी में काम किया था। वैसे इनमें से जो रेक्स हैरिसन थे ना, उनकी आवाज को हिंदी में डब किया गया था और इसमें उनकी आवाज बने थे हमारे कितने आदमी थे फेम गब्बर, यानी कि अमजद खान साहब। खैर इस मूवी की एक और दिलचस्प बात और वो ये कि ये आखिरी फिल्म थी जिसमें लेजेंड मोहम्मद रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए आवाज दी थी। यहाँ इससे पहले शम्मी और रफी साहब की जोड़ी कई सिने प्रेमियों का दिल जीत चुकी थी। कुछ भी कहिए, देखिए ये जो मूवी थी शालीमार सॉलिड थी, एकदम बड़ी कमाल की, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पर बनी थी। बेशकीमती हीरे को लेकर दुनिया भर के नामी चोरों के बीच किस तरह से संघर्ष होता है, इसी को बेहतरीन अंदाज से पेश किया गया था इस फिल्म में। इसमें आप उस वक्त के हॉलीवुड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लिहाजा इसे हिंदी के अलावा इंग्लिश डब के साथ अमेरिका तक में रिलीज किया गया था। वेल मूवी कितनी चली या नहीं चली ये छोड़िए, पर इसके गाने वाकई जबरदस्त थे। अब आप ही सोचिए, अगर म्यूजिक आरडी बर्मन साहब का होगा तो फिर गाने तो जबरदस्त होंगे, है कि नहीं? तो बर्मन साहब को मैं बता दूं आपको कि इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उस साल का और इसी तरह से वो गाना था ना, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, इसके लिए किशोर दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का और 1-2 चा चा चा के लिए उषा उत्थुप को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। वैसे वो जो गाना ना, हम बेवफा हरगिज न थे, कमाल का एक्सपेरिमेंट है। आर डी बर्मन कुछ भी कर सकते थे, किया उन्होंने। देखिए ना बीच में वो ट्राइबल आवाजें आती हैं, जिंगा लाला हूं, जिंगा लाला हूं, जिंगा लाला हूं, हुर हुर हुर। तो चलिए फिलहाल तो गाना सुन लेते, कमाल के लिरिक्स हैं इसके, मुझे बहुत पसंद है और किशोर दा के जो सबसे बढ़िया गाने मुझे लगते हैं जो उन्होंने गाए हैं उनमें से एक है ये गाना। तो आइए इन गानों के साथ आगे बढ़ाते हैं इस कारवां को। आप बने रहिएगा सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव के साथ।

0: आसानी से। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। वेलकम, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। यही वो गाना है जो मुझे इंस्पायर करता है कि बेसुरे हो कोई बात नहीं, गाओ, मस्त होकर गाओ। ये रेडियो मस्ती है, 24/7 लाइव आपकी सेवा में हाजिर, आपको एंटरटेन करने के लिए। फिलहाल मैं भी आ गया हूँ, मेरा नाम है समर, लेकर यादों का कारमा। और आज हमारा कारमा गुजरा सिंगापुर 1978 से। मेरे ख्याल से ये गाना आपने भी गुनगुनाया होगा, गाया होगा। भाई मैं तो गाता हूँ, और मैं ही क्या, मेरे जैसे कितने ही बाथरूम सिंगर इस गाने की वजह से ही। ठंडे ठंडे पानी से, हालांकि देखिए सिंगापुर में तो आप हमेशा इस गाने को गा सकते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहा सकते हैं। वेल, मैं इस गाने की चर्चा क्यों कर रहा हूँ यही जानना चाहते ना आप, क्योंकि जिस फिल्म का ये गाना है ना उसी का जिक्र मैं करने वाला हूँ। जी, 1978 में ये फिल्म आई थी, और तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। महेंद्र कपूर साहब ने गाया और कमाल का हिट हो गया ये गाना। बेटा बजाओ ताली, हम गाएंगे कवाली। मतलब पिताजी और बेटा जी बाथरूम में नारे, और क्या कह रहे हैं, बाल्टी जरा उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। मतलब बहुत ही कमाल का और सिचुएशनल गाना है, बड़ा मजा आता है देखने में भी और सुनने में भी और गाने में भी। कभी करके देखिएगा, आपने भी किया होगा। नहीं किया, कमाल करते हैं आप, क्या किया फिर आपने। तो चलिए ये मैं बता दूं, फिल्म पति पत्नी और वो का गाना है जिसको डायरेक्ट किया था बी आर चोपड़ा साहब ने। ये फिल्म इसी साल यानी 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संजीव कुमार हैं, विद्या सिन्हा हैं और रंजीता हैं लीड रोल में। तो लेकिन तीन एक्टर्स और हैं, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बाबी, जो अपनी गेस्ट अपीरियंस से फिल्म को महका रहे हैं। और ये जो फिल्म का नाम है ना, पति पत्नी और वो, अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर ये बेस्ड कहानी, आप समझ गए होंगे। ऐसा उस वक्त दिखाना इंडिया में टैबू था, या यूं कहूं कि पर्दे के पीछे ये बातें हो सकती थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, इसलिए इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया, एडल्ट्स ओनली। लेकिन इस फिल्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बखूबी, या कह सकते हैं कि थोड़ा साफ सुथरे अंदाज में दिखाया गया है, और इसीलिए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की, बहुत अच्छा बिजनेस किया। कुल मिलाकर लोगों को ये फिल्म पसंद आई। खैर, जहां तक गानों की बात है, ठंडे ठंडे पानी से नहाने के अलावा फिल्म में तीन गाने और हैं। आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे हैं, और किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और आशा भोंसले जी की आवाजें हैं इसमें, जिन्हें रविंद्र जैन साहब का म्यूजिक डायरेक्शन मिला है। कुल मिलाकर पसंद किए जाने वाले गाने। तो चलिए फिर देर किस बात की, बाथरूम में चलते हैं। मेरा मतलब यही रही, बाथरूम वाली सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप महसूस करेंगे कि आप भी ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं इस वक्त। लीजिए, ये गाना हाजिर है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लौटूंगा तो एक और फिल्म का जिक्र करूंगा। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके साथ।
1: ठंडे ठंडे पानी से

0: से
1: क्या?
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर हाजिर हूँ लेकर यादों का कारवां एक बार फिर से। और आज मैं 1978 के साल से कारवां को गुजार रहा हूँ, या यूं कहूं कि हमारा कारवां गुजार रहा है और मैं भी उसके साथ साथ गुजर रहा हूँ, आपको लिए चल रहा हूँ। आज के सफर में हमने कई फिल्मों का जिक्र किया, लेकिन अब जिस फिल्म का मैं जिक्र करने वाला हूँ ना, वो बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी। भाई देखिए, 1978 में कई मूवीज रिलीज हुई, अमिताभ बच्चन साहब, शशि कपूर, धर्मेंद्र, बड़े बड़े नाम थे उनमें। ऐसी एक्ट्रेसेस थी रेखा, राखी, हेमा मालिनी, जीनत अमान, ये वो एक्ट्रेस थे जिनके नाम से ही फिल्में चला करती थी उस दौरान, इनफैक्ट दौड़ा करती थी। पर बीच बीच में इक्का दुक्की ऐसी मूवीज भी आई जिनके पास न तो कोई बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे और न ही कोई नामचीन एक्टर या एक्ट्रेसेस। ऐसी एक मूवी आई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो है आंखियों के झरोखों से। आहा, क्या फिल्म थी भाई, जिसमें वो गाना है आंखियों के झरोखों से, मैंने देखा जो सांवरे, कितना प्यारा गाना है। मेरा कोई कनेक्शन है शायद इस गाने से, पता नहीं कहां खो जाता हूं इस गाने को सुनकर। वेल, इस मूवी में हीरो थे सचिन, क्रिकेट वाले नहीं, सिनेमा वाले सचिन। सचिन ने उस वक्त तक कुछ अच्छी मूवीज जरूर दी थी, जैसे 75 में आई थी उनकी गीत गाता चल, जो बहुत हिट रही, छोटे बजट की फिल्म थी वो। इसके बाद 76 में आई बालिका वधु और फिर ये आंखियों के झरोखों से। ये 1978 की ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। सचिन के ऑपोजिट थी एक्ट्रेस रंजीता, जो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में कर चुकी थी ऋषि कपूर साहब के साथ। लैला मजनू में उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था, मैंने आपको बताया था। इस मूवी में भी सचिन और रंजीता ने दिखा दिया कि एक्टिंग के मामले में वो किसी से भी कम नहीं है। और वैसे ये मूवी भी टिपिकल राजश्री प्रोडक्शन के बैनर पर थी, जिनके लिए कहा करते हैं कि उनकी मूवीज देखने के लिए साथ में रुमाल रखना जरूरी होता था। अरे भाई, मूवीज होती इतनी इमोशनल थी कि दर्शकों के आंसू टप टप निकलते थे। वाकई ये फिल्म भी कुछ ऐसी है, मैं भी रोया था इस फिल्म को देखकर। और अब इसीलिए जब कभी ये टेलीविजन पर आती है और मुझे मौका मिलता है इसे देखने का, तो मैं एंड नहीं देखता हूँ इसका, दिल दुखी हो जाता है। म्यूजिक रविंद्र जैन साहब का है और ये इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है, गाने भी उन्होंने लिखे हैं। टाइटल ट्रैक तो इतना पसंद किया गया था कि आज भी सुनिए तो, मैंने कहा ना कि मेरा तो कोई कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कहीं जोड़ लेता है, मन को कहीं ले जाता है और मन करता है कि बार बार इसे सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। ये गाना उस वक्त बिना का गीतमाला के एनुअल टॉप चार्ट लिस्ट पर भी बना रहा। फिल्म के और भी सॉन्ग्स हैं जो वाकई सूदिंग हैं, तो चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म से एक। नहीं कंप्यूटर जी, ये तो अन्याय हो जाएगा, कम से कम दो गाने तो सुनाइए आंखियों के झरोखों से प्लीज। हाँ, और आप कान के झरोखों से सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। लौटूंगा एक और आखिरी फिल्म का जिक्र करने अब से कुछ ही देर बाद। स्टे कनेक्टेड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वो साथ ही रहे, तेरे बिना भी क्या जीना। अरे आप आ गए, वेलकम बैक। वैसे ये कारवां आपके बगैर अधूरा है। नहीं, मेरा नाम है समर, रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका कर रहा हूँ स्वागत। लेकर हाजिर हूँ यादों का कारवां, और यादों का कारवां में आज हम 1978 के साल से गुजरे इसलिए कि अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते जाते इस साल की तमाम फिल्मों का लेखा जोखा आपके सामने पेश कर देता हूँ। बॉलीवुड में लेट 70s का दौर कमाल का था। क्या जबरदस्त फिल्में हैं, क्या जबरदस्त गाने थे उनके, बेहतरीन एक्टर्स, क्या बेहतरीन म्यूजिशियंस हुआ करते, सब कुछ अलग था, बहुत उम्दा। हमें शुक्रिया करना चाहिए उस दौर के उन तमाम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का जिन्होंने हम सभी को खूबसूरत एंटरटेनमेंट दिया, और हम बहुत खुश हुए। वाकई हेड्स ऑफ टू ऑल दोस ग्रेट पीपल। तभी तो उनमें से कईयों की गिनती लेजेंड्स के तौर पर होती है। सही कह रहा हूं ना मैं? वेल, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि हमने फ्लैशबैक पर जाकर 78 की मूवीज को पकड़ा और उनकी फिल्मों और गानों के साथ ही तमाम छुए अनछुए पहलुओं को एक बार फिर से टटोलने की कोशिश की ताकि हमारी यादें ताजा रहें। तो चलिए, अब मेरे जाने का वक्त है। वो कहते हैं ना कि अगर जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। तो अभी इजाजत दीजिए, किसी और खूबसूरत साल की खूबसूरत फिल्मों और उनके गानों को कलेक्ट करके मैं लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। तो चलते चलते भी आपको खुश किए जाता हूँ, 78 के दो बेहतरीन गाने आपको सुना देना चाहता हूँ। एक है बच्चन साहब और राखी स्टारर फिल्म कस्मी वादी का टाइटल ट्रैक किशोरदा और लता दीदी की आवाज में, और दूसरा गाना आपको सुना देते हैं। कौन सा सुनाऊं? आइए, ये मेरा फेवरेट है, पसंद है मुझे बहुत। मेरी पसंद का एक गाना सुन लीजिए आप, मुकद्दर का सिकंदर से, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। आई रियली लव्ड इट, बहुत बहुत बढ़िया गाना है। और ये सिर्फ गाना नहीं है बल्कि आप लोगों को मैसेज भी है, आपके बिना भी क्या जीना भाई। हाँ, लेकिन आपसे कुछ वादे भी हैं। आप कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल वरना मुझे बहुत चिंता हो जाएगी। हाँ, रखिएगा आप अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बन के सज जाइएगा, और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद रखें और मैं आपकी कहानियां सुनाऊं। मुझे भी याद रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, यह रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। यादों का कारवां लेकर हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।

अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: की तमन्ना है।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: मैंने पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो आपके

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: लव गुरु तुम्हारे लव का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
2: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा, जा उसके लिए 2 रुपए का गुलाब ला।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक ठग सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: ऐसे तो बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन एक आदत अगर आप अपने स्कूल टाइम वाली अपनी डेली लाइफ में ऑप्ट कर लोगे ना, तो आप बहुत खुश रह सकते हो। एडवाइस फ्री की है, लेना चाहो तो ले लो। सो हेलो हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। और वो एडवाइस ये है कि जैसे स्कूल टाइम में प्रेयर करने के बाद सुबह सुबह थॉट ऑफ द डे हमें बोल बोल कर बता दिया जाता था, जस्ट लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? ऐसे थॉट्स अगर हम रोज सुबह उठ के खुद ही ढूंढ के डाउनलोड करके देख ले और अपना वॉल पेपर लगा ले, तो लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी ना? सुबह सुबह कुछ अच्छी बातें आप कर नहीं सकते, तो कुछ अच्छी बातें पढ़ ही लिया करो, किताब के दो पन्ने ही सही, लेकिन लाइफ में थोड़ा एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फिल्मों से कुछ और सीखो, अपने स्कूल टाइम से कुछ और सीखो ना सीखो, ये बात जरूर सीखो कि सुबह थोड़ी सी पॉजिटिव होनी चाहिए। एनीवेज आई ट्राइड इट टुडे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आपके संग शेयर करूं। आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर बहुत सारी बातें और गाने शेयर करने के लिए आ चुकी है, सो डोंट गो एनीवेयर, बिकॉज थोड़ी सी देर में मैं एक ऐसे सेलिब्रिटी का नाम लेने वाली हूं जिसने नो किसिंग पॉलिसी को सालों से बरकरार रखा है। ओके, कमिंग अप।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: बिल्कुल बिल्कुल आपको अपनी लाइफ के कुछ उसूल बनाने पड़ते हैं और उन उसूलों पर इतना चलना पड़ता है कि आपके लोग बेंचमार्क रखने लगे अपनी लाइफ में, राइट? सो वो कौन सा सेलिब्रिटी है जिसने आज तक फिल्मों से लेके ओटीटी से लेके रियलिटी शो से लेकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर नो किसिंग पॉलिसी को 100% ऑप्ट किया है? चलिए मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड उस सेलिब्रिटी का नाम है द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ बॉलीवुड, यानी सलमान खान, राइट? इन्होंने सालों से इस पॉलिसी को बरकरार रखा है और आज तक उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नो किसिंग पॉलिसी पॉइंट रहता है। तो सलमान खान अपने आप में बहुत सारी चीजों की वजह से पॉपुलर रहे हैं, अपनी एक्टिंग से सबसे ज्यादा, तो ये पॉइंट भी थोड़ा हाईलाइट करना तो बनता है बॉस। आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
3: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
4: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
3: थैंक यू,
5: थैंक यू,
4: थैंक यू,
2: थैंक यू, वी लव यू।
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: अजी डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
8: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
7: सुना।
8: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। आजकल जरा जरा सी बात पर क्या कह दिया जाता है, आ, आ, आ, आ, कि भाई बहुत ज्यादा खर्चा पानी हुआ है इस पे। वो चाहे कपड़े ही क्यों ना हो, है ना, हम सोचते हैं कि इतने महंगे एक्सपेंसिव कपड़े लिए हैं तो इसका जरा अच्छे से डॉलर वसूल करना चाहिए। मतलब एंड तक कपड़े की जर्नी जो है ना, वो पोछे तक पहुंचनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैं आज इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि एक टाइम पर सच में जो बैंक बैलेंस है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मतलब खर्चा करने से पहले भी लोग 100 बार सोचते थे, लेकिन आजकल बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह से करोड़ों की तरह पैसे गवाए जा रहे हैं, बहाए जा रहे हैं, उनसे लग रहा है कि थोड़ा इसकी वक्त कम हो चुकी है। यू नो व्हाट, 80s 70s के दौरान जब मुगले आजम मूवी बनाने की तैयारी करी जा रही थी, राइट, जब प्यार किया तो डरना क्या, बिल्कुल उस मूवी के लिए 145 करोड़ रुपए का बजट था। हाँ जी, मतलब इत्र के फूल, गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी, और वो कहते हैं ना, वो जो शीश महल बनाया गया था ना, तो लाखों का तो शीश महल का शीशा ही आया था। तो एक टाइम पे आप कह सकते हैं गैम्बलिंग करी गई थी कि अगर ये मूवी चल गई तो सब उभर जाएंगे, और अगर ये मूवी पिट गई तो डायरेक्टर्स सड़क पर आ जाएंगे। तो आज भी इतिहास गवाह है कि इकलौती मूवी जिसने सबसे बड़ा रिस्क लिया हो इन्वेस्टमेंट के नाम पर, वो आजकल के VFX वाली मूवीज नहीं है, बल्कि बॉलीवुड मूवी मुगले आजम है, राइट। तो ये फैक्ट ऑफ द डे याद रखना। मीनवाइल मैं आज यू नो पर मस्ती मॉर्निंग शो पर याद रखती है कि आपके लिए सिर्फ बात ही नहीं, गाने भी तो चलाने मेरी जान। आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल और बताती हूँ शाहिद कपूर की एंट्री किस मूवी में होने वाली है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning. कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
5: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
4: रहो। यू नो व्हाट, चार्मिंग कह लो, चॉकलेटी कह लो, रोमांटिक कह लो, इनोसेंट कह लो, ऐसी पर्सनालिटी, इतनी सारी पर्सनालिटी किसी एक शख्स में मिली है क्या? मिली ना सही, दिखी है क्या? मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। सो मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि ये कहना बॉलीवुड फिल्मों में थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बिकॉज इन मूवीज में हम बहुत जल्दी अपने एक्टर्स को अपना फेवरेट एक्टर बना लेते हैं, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत जल्दी पसंद आ जाते हैं एक्टर्स हमें, राइट? सो मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी हमें शाहिद कपूर में नजर आई है, कि ये जेन्युइन भी हैं, अपनी बीवी से प्यार करते हैं, मूवीज भी बहुत ही लॉजिकली ढूंढते हैं, जब काम करते हैं तो शिद्दत से करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब इनकी एंट्री कहाँ है भैया? आजकल ये मूवीज के दूसरे पार्ट में जरूर नजर आ रहे हैं, बहुत जल्द आपको कॉकटेल मूवी के सेकेंड पार्ट में तो नजर आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब इन्होंने एंट्री मार ली है नो एंट्री मूवी के सेकेंड पार्ट में, राइट? ऑफकोर्स नो एंट्री मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है वो बिपाशा वासु की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन अब इसके दूसरे पार्ट में फीमेल एक्टर कौन होगा ये तो अभी तक नहीं बताया है, लेकिन हाँ मेल पार्ट में शाहिद कपूर का नाम लॉक किया जा रहा है। बाय द वे, आजकल मूवीज का सेकेंड पार्ट का जो एक नया ट्रेंड बना है ना, आय हाय हाय हाय, इससे क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
2: रहो। एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।